और गोरा मैया कहती है शिव से कि मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही तेरी सती हूँ, जरा मुझको तो जान, एक बार आंखें खोल बोले और अपनी गोरा को पहचान।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमरीका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए

0: ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को रागिनी का नमस्कार। भगवान की भक्ति इंसान को एक अद्भुत शक्ति देने के साथ उसे एक धैर्यवान, निष्ठावान और दयालु, ईमानदार इंसान बनाती है। आइए करते हैं प्रभु की आराधना वंदना कार्यक्रम के माध्यम से।

भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उसे नाराज ना होना। भगवान वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान इंसान के अंदर जीने की शक्ति पैदा करते हैं, इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला भी बढ़ाते हैं।

हम सभी को भगवान के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हो सकें और बुरे कर्म करने से बचें। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो हमें उसमें उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य भी देते हैं।

देवों के वो देव हैं, इसीलिए महादेव है। शिव शंकर है अंतर्यामी, सारे जग के हैं वो स्वामी। तन पर भस्म लगाते नंदी की करते सवारी, सदा प्रसन्न रहने वाले शिव शंकर भोले भाले।

किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से तूने पकड़ा मेरा हाथ भगवान, मेरी तो किस्मत ही बदल गई।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने हमारी तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुने कार्यक्रम विवरण।

सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। खेती में आज ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 6:50 पर। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:00। सुगम संगीत सुनिएगा सुबह 7:45 पर, सुबह 11:30 पर और रात्रि 9:15 पर।

नमस्कार, उदयपुर की कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर हमारे दोनों ही चैनल्स पर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ और एफएम रेडियो लेक सिटी पर, और सुबह 9:30 पर आप सुन सकते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। यादों के झरोखों से आप सुन सकते हैं सुबह 10:00 राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा, इसका आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:00 हमारे मीडियम वेव चैनल पर।

फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं दिन में 12 बजे, दोपहर 1:45 पर और रात्रि 10 बजे। महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:05 पर। किसान भाई सुन पाएंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत दोपहर 2:30 पर।

श्रोताओं, ये थी हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी की उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुने श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती और घर आप सुन सकते हैं शाम 7 बजे, जिसमें होगी चौपाल की बात, साथ ही कुछ राजस्थानी लोकगीत।

राजा जनक की यज्ञशाला में सीता को वरण करने के लिए आए नृप समुदाय ने श्री राम तथा लक्ष्मण को अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार देखा। कुछ को वो वीर रस की प्रतिमूर्ति दिखे तो कुछ ने उन्हें अपने काल के रूप में देखा। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। इसी प्रकार स्त्रियां भी हर्षित होकर दोनों भाइयों को अपनी मन भावन छवि में देख रही हैं। उनके लिए मानो स्वयं श्रृंगार रस मानव का अनुपम रूप धारण कर वहां पहुंच गया है। विद्वानों को प्रभु का विराट रूप दिखा और जनक जी के सगे संबंधियों ने उन्हें अपने कुटुंब के रूप में देखा। रानियों को वो अपने बालक प्रतीत हो रहे हैं तो योगी यति उनमें शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन हुए, किंतु सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं उसके सुख और स्नेह का वर्णन करना कठिन है। ना तो वो स्वयं उसे व्यक्त कर सकती हैं, ना ही कवि उसके लिए सक्षम है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया ने नीता कोठारी रो राम राम। किसान भाया आज बात करंगा अणि महीना आपाने खेती बाड़ी रा कसा कसा काम करना है। साग भाजी री फसल जी किसान भाई ले रहा है वी फूल गोभी रे महीने अगेती उन्नत प्रजाति जिसरे की पूसा कार्तिक शंकर, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा अश्विनी, पूसा मेघना अणा सब किस्मा रो चयन कर सके। बीज दर और वावणी री बात करा तो हाउ जमावर क्षमता वाला 500-600 ग्राम और शंकर किस्मा रे वास्ते 350-400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर रे दर पर्याप्त वेगा। फूल गोभी री अगेती वावणी रो टेम मध्य मई और जून में बीज वावणी रो काम कर सका। 5-6 सप्ताह वाली जा पोत वे वंडो रोपाई भी आपा अणि टेम पे कर सका। बीज उपचार रे वास्ते 22 टिन या पचे केप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दर हूँ या पचे ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज रे हिसाब हूँ करनो है। नर्सरी क्यारी छायादार और पर्याप्त नमी वाला जगह पे वनानी चावे। क्यारी रे आकार री बात करा तो 3x0.45x0.15 और 100 वर्ग मीटर नर्सरी क्यारी प्रति हेक्टेयर क्षेत्र वास्ते पर्याप्त वेगा। पोषक तत्व प्रबंधन रे वास्ते खेत री तैयारी रे टेम पे 25-30 टन प्रति हेक्टेयर री दर हूँ। हाउ सड़ी तकी गोबर री खाद मिट्टी में मिलाई देनो है। किसान भाया रोपाई रे पहला 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर और खेत री अंतिम तैयारी रे टेम पे आधी मात्रा में नाइट्रोजन और पूरी मात्रा में फास्फोरस और पोटास जो है जमीन मैंने मिलाई देना है। वची तकी जा नाइट्रोजन री बराबर मात्रा है मैंने 2 हिस्सा में बांट देनो है। 1 हिस्सा ने रोपाई रे 1 महीना रे केड़े निराई गुड़ाई रे लारे नाकनो है और दूजो जो वचियो तो कोई हिस्सो है विने फूल वनवारी स्थिति में पौधा पे मिट्टी चढ़ावारे टेम पे मिलाई देनो है। खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन की बात करा तो अंडे वास्ते रोपाई पहली बेसालीन 2.5 लीटर या पचे स्टॉम 3.3 लीटर प्रति हेक्टर री दर हूँ। छिड़काव करने हल्की पाणत कर देनी है। अगेती फसल में रोपाई रे तुरंत बाद और वनडे बाद साप्ताहिक अंतराल पे और मध्यम और पछेती फसल में 10-15 दना रे अंतराल पे पाणत करनी है। रोग प्रबंधन री बात करा तो फूल गोभी री नर्सरी अवस्था में आर्द्र गलन फफूंद नामक रोग वही जावे। यो पौधा रे तना सतर रे बड़े उं गलवा लागे और पौधा मर जावे। अंडे नियंत्रण रे वास्ते ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति मिलीलीटर में मिलाई ने बीजा ने उपचारित कर देनो है। या पछे ट्राइकोडर्मा 25 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम सड़ी तकी गोबरी खाद ने नर्सरी में 100 वर्ग मीटर में हाउ तरीको मिलाई देनी है। या पछे 22 टिन या पछे केप्टोन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज री दरू बीज ने उपचारित कर लेनो है। या पछे 22 टिन या केप्टोन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाई ने छिड़काव कर सका तो अणि रोग पे जो है नियंत्रण वे सकेगा। फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, पालक, मेथी और शलजम री बीज वाली फसलारी कटाई कर सका। बीजा ने अतरो हुकावणो है कि वन में 8% तक इस नमी रहे। अबे किसान भाया चारा फसलारी बात करा तो बरसीम, जई और लोबिया रे बीज वाली फसलारी कटाई रो काम कर लेनो है और 10-12 दना रे अंतराल पे पाणत करता रहनो है। मई में हरा चारा रे वास्ते बाजरा, ज्वार और मक्का री फसल री वावणी कर सका। अंडी वावणी मार्च रे अंत या बचे अप्रैल तक करी जावे। पाणत रो विशेष ध्यान आपाने राखनो है। हर एक कटाई रे केड़े पाणत जरूर कर देनी और नाइट्रोजन री मात्रा री भी ठीक तरीको आपाने उपयोग करनो है। किस्मा रे चयन री बात करा तो मई

महीने सिंचित अवस्था में चारा रे वास्ते बाजरो किस्म पीसीबी 141, मकचरी किस्म TL1, नेपियर बाजरा संकर PVN 233 और 83 संकर 21, ये सब भाव किस्मा है। ज्वार रे किस्मा है JM20, HC136, HC171, HC260, HC308, SL44 और पंजाब सुडेक्स चरी 1। मक्का किस्मा है इनमें J1006, प्रभात, प्रताप, केसरी और मेगा। गिनी का श्री बात करना तो PGG 518 और 101, ग्वार FS 277 और ग्वार 80, लोबिया री बात करना तो लोबिया 88 और लोबिया 90। ई सिफारिश अंडी जो है कर सका और ई किस्मा जो है चारा री फसला रे वास्ते हावे वे चारा फसला में मिले ने वामाऊ जो है चारा पौष्टिक बने और पैदावार भी हावे वे बत्ती कटाया आने मिल सके। पोषक तत्व प्रबंधन री बात करा तो मिश्रित चारा में सही मात्रा में बीज लेने रोगा रे वास्ते उपचारित कर लेनो है। पचे खेत में 2-3 बार जुताई कर देनी है। 10 टन देसी गोबर री खाद और 1 बोरो यूरिया नाकने बीज छिड़क ने बोई देनो है और ज्वार री 1 कटाई वाली प्रजातिया में नाइट्रोजन री आधी मात्रा और पहली पाणत्र केड़े खेत में प्रयोग करता रहनो है। बहु कटाई वाली चरी में 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 65 किलोग्राम यूरिया रे लारे मक्का में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 87 किलोग्राम यूरिया वावणी रे 30 दना रे बाद अपने ट्रॉप ड्रेसिंग कर देनी है। हरेक कटाई रे बाद वची तकी जो नाइट्रोजन री बराबर मात्रा में उपयोग करनो है और हरा चारा री अणे जो है हाउ बढ़तवार वेगा। किसान भाया हाउ बढ़तवार वेवा पे जरूरत रे अनुसार चारा री कटाइया लेता रहनो है और कटाई रे केड़े आधो बोरो यूरिया छिड़क देनो है ताकि चारा री फसला री पैदावार हाउ वे सके। अबे बात करना ग्रीष्मकालीन गेरी जुताई री। रवि फसल कटवारे तुरंत केड़े मिट्टी पलटवा वाला हल या पचे ट्रैक्टर गेरी जुताई कर देनी है। नमी रेवा पे जुताई करवा डीजल री मेहनत कम लागेगा और ग्रीष्मकालीन जुताई री बात करा तो देखो रवि फसला री कटाई रे केड़े खेत में मिट्टी ने पलट ने गेरी जुताई कर देनो है। अणी दौरान देखो खेत ने खाली छोड़ ने तेज धूप और हवारे संपर्क में रेवा देनो चावे। ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी री उर्वरता बढ़े, खरपतवार खत्म वेवे, कीट नियंत्रण वेवे, प्राकृतिक प्रभाव भी हावरे वे, वर्षा जल संचयन वे सके, कार्बनिक पदार्थ भी बढ़े, लारे इस देखो कीट रोग अणा पे नियंत्रण वे सके, मिट्टी रो कटाव भी कम वे और टेम पे देखो अपनी वामनी वे सके। फसल अवशेष जना और खरपतवार मिट्टी में दबाई देना चाहे अणियों भी सड़ता रहे जणियों कार्बनिक पदार्थ बढ़े और देखो जमीन उपजाऊ बने। बहुवर्षीय खरपतवार जिस तरह की मोथा दूब और जड़ा समेत ऊपर आई जावे अणियों धूप और गर्म हवा में सूख नहीं नष्ट हो जावे। ग्रीष्मकालीन जुताई में देखो जुताई करा तो कीड़ा रा अंडा पिपा और इलिया उपरे आई जावे जणियों चिड़िया खाई जावे और यह धूप में नष्ट हो जावे। वायु और सूर्य री किरणों देखो मिट्टी ने खनिज पदार्थ पौधा रे वास्ते उपलब्ध वेवे, मिट्टी री बनावट दानेदार वेवे, वायु संचार और जल धारण क्षमता भी अणियों बढ़े। ग्रीष्मकालीन जुताई गोबर री खाद और दूजी जो कार्बनिक पदार्थ है वे मिट्टी में हाउ तरीको मिल जावे, पोषक तत्व जल्दी फसला में उपलब्ध वे सके और तेज धूप कीड़ा मकोड़ा रोगजनक निमेटोड री गांठा खरपतवार रा बीज ई सब उपरे आईने नष्ट वे जावे, रोग रो प्रकोप भी कम वे जावे। और देखो वर्षा में पानी खेत री मिट्टी में कटाव में भारी कमी वे वे और खेत तैयार रहे जणियों कही है पहली वर्षा रे लारे जो है आपा खरीफ फसल री टेम पे वामणी भी कर सका और हाउ उपज ले सका। तो किसान भाया अणी तरीको आपा जानकारी करी कि भाई किस तरह आपा ग्रीष्मचालीन जुताई कर लांगा झंडा लाभ वे सकेगा और शाकभाजी री खेती जो किसान भाई कर रहा है वी किस तरह काम करेगा ताकि उपज हाउ वे सके और पैदावार भी हाउ वे सके। अबे माने कार्यक्रम रो टेम वे गयो तो चाला सा राम राम साहब।

बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुने सदाबहार नगमे। पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम जमीन आसमान।

ये गीत था फिल्म पड़ोसन से, आवाज़ थी किशोर कुमार की। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम चंबल की कसम।

ये गीत था फिल्म जमाने को दिखाना है से। आवाज थी शैलेंद्र सिंह की। सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम दूसरा आदमी।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी
0: हाँ?
1: आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: सदाबहार नगमों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत आशा भोंसले और किशोर कुमार की आवाजों में, फिल्म का नाम ये वादा रहा।

0: इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए अब सुने आबो हवा।
1: जलवायु और समानता, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में असमानता को और बढ़ाता है। कोई व्यक्ति कितना प्रभावित होगा, यह उसकी आय, लिंग, उम्र, शिक्षा और सेहत पर निर्भर करता है। अमीर देश और अमीर लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित रख पाते हैं, जबकि गरीब लोग जो सबसे कम प्रदूषण करते हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। देशों के अंदर भी

सामाजिक आवास, स्वास्थ्य सेवा और आपदा योजना जैसे कदम जरूरतमंदों की रक्षा करते हैं। दुनिया में असमानता को बढ़ाने से रोकने के लिए उचित धन सहायता और संसाधनों का सही बंटवारा बहुत मायने रखता है। यहाँ एक रोचक जानकारी है। दुनिया की सबसे अमीर 1% आबादी के पास दुनिया की 43% संपत्ति है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समुन्दर का जल स्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को

0: और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: अभी आप सुन रहे थे आबोहवा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए अब सुने सुगम संगीत, पहली गजल पंकज उदास की आवाज में।

जगजीत सिंह की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत बस यहीं तक। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से समाचार बस कुछ ही देर में।

0: का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देबांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिले।

0: करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है।

0: जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees.

0: समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आइए जिंदगी के हर पन्ने को खुशनुमा बनाएं और शुरू करें आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: ज्योति।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और फिट लाइफ मंडे में आज एक नज़र में हम बात करेंगे विश्व फुटबॉल दिवस और राजबिहारी बोस जयंती पर। उसके बाद आज की खास खबरें और देंगे आईपीएल अपडेट्स।
1: ओह वेट विद्या, पहले ये तो पूछ लें कि आपका वीकेंड कैसा रहा उदयपुर? संडे की खुमारी के बाद जो ये मंडे है ना, ये वाली सुबह थोड़ी अलग सी होती ही है, पर टेंशन ना लीजिए, आज है फिट लाइफ मंडे तो हमारी हेल्दी हैबिट्स में हम जानेंगे मॉर्निंग रूटीन को अधिक उत्पादक कैसे बनाएं, सिटी अपडेट्स में जानेंगे शहर के प्रमुख स्पोर्ट्स क्लब्स और स्पोर्ट्स एरेना के बारे में, और सबसे खास भूलिएगा नहीं आज है लिसनर्स कनेक्ट, तो आज के प्रोग्राम के बारे में आपके रिव्यूज का हमें इंतजार रहेगा। नंबर सभी से नोट कर लीजिए 9462697568।

तो श्रोताओं, आपको भी हमारे साथ चलना है और प्रोग्राम सुनना है नमस्कार उदयपुर। खेलें फुटबॉल बड़े स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भावना है और आज है 25 मई का दिन जिसे विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह खेल हमें अनुशासन, मेहनत, आत्मविश्वास और टीम वर्क की

0: सीख देता है। आज के समय में फुटबॉल युवाओं को फिट और सक्रिय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है जो 200 से अधिक देशों में खेला जाता है। फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा वर्ल्ड कप माना जाता है और वर्ष 2026 का फीफा विश्व कप भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसमें पहली बार 48 टीमें हिस्सा लेगी और ये अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होगा। ज्योति,
1: बिल्कुल, और इंडियन फैंस को भी कहाँ हम पीछे छोड़ रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ब्रॉडकास्ट

बैंकिंग में लगातार अपनी जगह मजबूत करने के लिए विद्या जी जान से जुटे हुए हैं। इंडिया में फुटबॉल का इस बार रोमांच या कहें उबाल सातवें आसमान पर है, और वो दिन नहीं है जैसे कि पहले क्रिकेट का ही कहते ना कि जैसे आज आईपीएल चल रहा है तो उसी का डंका बजता था, पर अब देश का बच्चा बच्चा सुनील छेत्री, ललियान ज्वाला, चांगते और अनिरुद्ध थापा जैसे हीरोज का भी दीवाना है। इंडियन सुपर लीग और आई लीग ने पूरा माहौल बदल दिया है। मोहन बगान, मुंबई सिटी एफसी और बेंगलुरु एफसी जैसे क्लब्स भी यूरोपीय क्लब के समान ही दीवानगी रखते हैं, मतलब फैंस उनके बड़े पीछे हैं कि हमारे ये क्लब हैं और इनमें बड़ी अच्छा फुटबॉल खेला जाता है। पर अगर उदयपुर की बात करें तो हमारे उदयपुर का मिजाज भी सिर्फ झीलों और महलों तक सीमित नहीं है विद्या, फुटबॉल की दीवानगी है यहाँ के युवाओं में भी। और राजस्थान में फुटबॉल का एक बहुत बड़ा पावर हाउस बनकर उभर रहा है हमारा उदयपुर। जिंक फुटबॉल का उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर जावर है, वहाँ पे हिंदुस्तान जिंक की जो वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल एकेडमी है उसने पूरे राजस्थान में उदयपुर का नाम रोशन किया है। देश का पहला टेक्नोलॉजी ड्रिवन फुटबॉल ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ अंडर 15 गर्ल्स से लेकर अंडर 23 बॉयज तक के लोकल टैलेंट को तराशा जा रहा है। और इसके अलावा ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन उदयपुर की टीम जिसने हाल ही में इतिहास रचते हुए नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है। गर्ल्स फुटबॉल टीमें भी हैं जो उदयपुर का परचम लहरा रही हैं। और टूर्नामेंट की बात करना भी तो ज़रूरी है विद्या, तो मशहूर चैंपियनशिप है हमारे उदयपुर की मोहन कुमार मंगलम फुटबॉल टूर्नामेंट। 1976 से जावर माइंस के स्टेडियम में होने वाला ये टूर्नामेंट सिर्फ उदयपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के बड़े क्लब्स जैसे कि आर्मी, रेलवे और नामी राज्यों की जगह उनका पसंदीदा अखाड़ा रहा है। तो अब जिंक फुटबॉल यूथ टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है जिसमें उदयपुर जोन की कई सारी टीमें हिस्सा लेती हैं और लोकल टीमें चैंपियन बनकर निकल रही हैं। तो उदयपुर के रोनाल्डो और मेसी प्रेमियों, अपनी डीपी बदलो और ज़ोर से चलाओ लेट्स फुटबॉल। आप हमें बताइए कि आप फुटबॉल को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी डिटेल्स या अपनी जो व्यूज़ हैं हमें भेजिए व्हाट्सएप पर 9462697568, हमारे व्हाट्सएप नंबर।

0: आप प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे। देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें से श्री राज बिहारी बोस का नाम भी आगे है। प्रथम महायुद्ध में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, वो राज बिहारी बोस के नेतृत्व में ही निर्मित हुई थी। राज बिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहते थे और अपने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए अपना अहम योगदान दिया। ज्योति
1: और विद्या, जब बात हो रही है देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौर की, तो एक सीन क्रिएट करते हैं। साल 1912, अंग्रेज सरकार भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर रही है। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पूरे तामझाम के साथ हाथी पर सवार होकर दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा है। चारों तरफ पहरा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार धमाका होता है। वायसराय पर बम फेंक दिया गया था। पूरी ब्रिटिश पुलिस हिल गई कि आखिर ये किया किसने, किसने ये मास्टर प्लान बनाया। और इसके पीछे जो दिमागी जादूगर था, उनका नाम था राज बिहारी बोस। अंग्रेज पुलिस उन्हें ढूंढती रह गई, पर वो भेस बदलने में इतने माहिर थे कि उन्हें ढूंढ नहीं पाई। अगर हम बात करें कि जब आज काम पर निकल रहे हैं, तो देश के इस महान नायक को एक बार याद करना ज़रूर बनता है। अपना काम हम ईमानदारी से करें, आसपास के लोगों की मदद करें, तो ये भी सच्ची देशभक्ति है। राज बिहारी बोस जी के चरणों में नमन करते हैं।

क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस, जिनकी आज जयंती है,

हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और बस बने रहिए यूं ही हमारे साथ। कहीं जाना नहीं है, बस ट्यून कीजिए हमारे दोनों ही चैनल और सुनिए हमारा प्रोग्राम। तो ज्योति, शहर की खास खबरों का अब हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले जयसमंद पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सोमवार को होने वाली जलापूर्ति मंगलवार को की जाएगी। ऐसे में श्रीनाथ नगर, SBCL ब्लॉक, वर्मा कॉलोनी, शीतल पार्क, डी ब्लॉक, विजय सिंह पथिक नगर, कच्ची बस्ती, ABCD ब्लॉक, चित्रकूट विहार, सेक्टर 14, इन क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। और जून में होने वाले सीनियर महिला राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला महिला टीम के चयन के लिए मंगलवार यानी कल 4:30 बजे शिकारबाड़ी क्रिकेट मैदान पर ट्रायल होगा। जिला क्रिकेट संघ के सचिव ने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर मैदान पर उपस्थित होकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र क्षेत्रीय केंद्र की ओर से 26 मई से 6 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से बच्चों को राजस्थान की पारंपरिक कला, संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़ने

0: का प्रयास किया जाएगा।
1: बिल्कुल, उन्हें बच्चों को अपनी संस्कृति लोक नृत्य से जोड़ना चाहते हैं ना, तो विद्या कहेंगे कि आज ही इंक्वायरी कर लें और इसके बारे में फॉर्म भर सकते हैं। वैसे सोमवार की ये सुबह है पर मौसम ने जो करवट ली ना विद्या, कल शाम को फतेह सागर की पाल पर ठंडी हवाएं चल रही थी तो मंडे का सारा आलस छूमंतर हो गया। हमें बताइए कि क्या कल शाम आप भी फतेह सागर पर थे? व्हाट्सएप नंबर 9462697568। चलिए मौसम की भी बात करते हैं लोकल अपडेट्स में। तो आज से नौतपा शुरू हो रहा है, यानी 25 मई से 2 जून तक गर्मी वाला दौर, प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग कहता है तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। नौतपा यानी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ रही हैं, प्रकृति में अग्नि तत्व सक्रिय हो गया है, प्रचंड गर्मी का ये दौर चलेगा और प्रदेश में कई हिस्सों पर शुरुआती 2 दिन हीट वेव रहेगी, फिर कुछ दिन हवाएं और उसके बाद में आंधी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान रहा शहर का अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 30.1 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ अगली अपडेट ये है कि NTA ने 28 मई को होने वाली CUET UG परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं और ये नई तारीखें घोषित की जाएंगी जल्द ही। रूटीन आवर्स हैं, आप घर से चलेंगे तो फ्लाईओवर वाले रास्ते पर चलेंगे तो मॉर्निंग है, रूटीन में थोड़ा सा तो ट्रैफिक ज़्यादा रह सकता है, कुछ समय लेकर चलिए ताकि आप अपने गंतव्य पर अगर पंचिंग करने चले हैं तो टाइम पर पहुँच सकेंगे।

0: तो श्रोताओं, अब आपको बता दें, कल यानी रविवार 24 मई को राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। यह आईपीएल के इतिहास में इस तरह का पांचवा सबसे बड़ा स्कोर रहा। और अब जिक्र करें रविवार यानी कल ही 24 मई को दिन के दूसरे मैच की, तो दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हरा दिया और प्लेयर ऑफ द मैच रहे कुलदीप। आगे अब जीत किसके सर होगी, ये देखते हैं ज्योति।
1: बिल्कुल, हमारी श्रोताओं से कहेंगे प्रिडिक्ट करें कि वो आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं। हमें व्हाट्सएप करिए 9462697568। वैसे जो ये धुन बजती है ना, तो बिल्कुल एक रोमांच सा जाग जाता है ना विद्या, कि आईपीएल में नई अपडेट क्या है। तो आज सोमवार है पर आज तो कोई मैच नहीं है, लीग मैच नहीं है, तो शांति कह सकते हैं। पर ये तूफान से आने के पहले वाली शांति है, क्योंकि अब प्लेऑफ के चक्रव्यूह में उतरने की रणनीति बना रही हैं टीमें। तो अब पॉइंट चार्ट पर अगर नज़र डालें तो इस सीज़न पॉइंट चार्ट ने कई टीमों के दिल तोड़े तो कई को आसमान पर बिठा दिया। इस बार टॉप फोर की रेस इतनी खतरनाक थी कि ना टॉप की तीन टीमें एक ही बराबर पॉइंट पर आकर रुकी हैं। टीम है रॉयल चैलेंजर्स, 14 मैच खेले 9 जीत कर 5 मैच हार कर 18 अंकों पर। गुजरात टाइटंस का भी सेम ही है, 18 पॉइंट्स पर है। सनराइजर्स हैदराबाद भी 14 मैच खेलकर 9 जीतकर 5 हारकर 18 पॉइंट पर है। और कल के शानदार मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर 8 मैच जीते और 16 अंकों के साथ चौथी पोजीशन पर है, क्वालिफाई किया है प्लेऑफ के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि ये अगले जो मैच होंगे, जो मैच का रोमांच होगा, 26 मई को मंगलवार को धर्मशाला के स्टेडियम में पहला टॉप टू में जो मैचेस होंगे, आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला है, 27 मई को एलिमिनेटर डे है, तो फिर यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलेगा। नंबर 3 की सनराइजर्स हैदराबाद टकराएगी नंबर 4 की राजस्थान रॉयल्स से। तो जो हारा उसका बोरिया बिस्तर गोल और जो जीता वो रहेगा 29 मई शुक्रवार को होने वाले क्वालिफायर 2 मैच में। तो आने वाले दिनों में रोमांच और ख़ास होने वाला है और देखने वाली बात होगी कि पर्पल कैप और जो हम ऑरेंज कैप के लिए बात कर रहे हैं उनके उसमें कौन आखिर लास्ट तक पहुंचता है, होड़ में टिकता है। तो चलिए कमेंट करिए, हमें हम वेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर्स फिर से दोहरा दें 9462697568।

0: तो ज्योति, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो आपका मूड कैसा रहता है?
1: मंडे मॉर्निंग अलार्म बंद करके वापस सोने का।
0: सोना नहीं है, जगना है, क्योंकि एक उत्तम सुबह की दिनचर्या सेहत को बढ़ावा देती है। एक ऐसी दिनचर्या बनाए जो आपकी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ आपकी ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षमता को भी अच्छा रखे। और आज हम हेल्दी हैबिट्स में बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन को और अधिक उत्पादक कैसे बनाएं, क्योंकि सुबह का जो समय होता है ज्योति, वो पूरे दिन की दिशा तय करता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, इससे मन तो शांत रहता ही है। और कोशिश करें कि रोज एक ही समय पर उठें, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो मोबाइल से दूरी रखें और खुद को थोड़ा समय दें। दिन की प्लानिंग करें, और अभी गर्मी का वक्त है तो सुबह हो सके तो आप सैर करें, अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं।
1: हाँ, छुट्टियां हैं, और मेरे हिसाब से एक और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपना ना बेड मेकिंग, यानी कि आपने जो बिस्तरा है अपना उठाएं, समेटें, तय कर सही करके रखें, क्योंकि इससे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि आपने एक काम कंप्लीट कर दिया है, सक्सेस।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये आपको एक थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स देता है। इसके अलावा पूरे दिन भर की अगर आप जैसे वॉक भी कर रहे हैं तो टू डू लिस्ट तो आप मन में प्लान कर ही सकते हैं।
0: बिल्कुल सही है, और आपकी छोटी छोटी आदतें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए कुछ ऐसे बदलाव अपनाएं जो आपको बेहतर बनाने में सहयोग करें। अपनी इस डेली रूटीन को बोरिंग बनाने की बजाय थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं। खुद के साथ साथ अपने बच्चों को भी फिट रखें, और बिना तनाव के एक ऐसी दिनचर्या बनाएं जो आपको ऑलवेज हेल्दी बनाए रखें।
1: हाँ।
0: और इस हेल्दी हैबिट्स के बारे में आप अपने क्या व्यूज देंगे?
1: हाँ बिल्कुल, हमें बताइए 9462697568 में। इतनी रिदम में गाना गा रही हूँ उदयपुर, जरूर आपके सुंदर से और अच्छे वाले व्यूज हमें मिल रहे हैं, है ना।

यह कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम रहेगा जारी, लेकिन इस समय सुबह के 9 बजने को है। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के दो दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4,938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति

0: व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 725 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1,100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में ये अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान पानी चोरी और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह दो चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं, विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं। और हमारी झीलों की नगरी जो उदयपुर है, वो अब सिर्फ पर्यटन और हेरिटेज के लिए नहीं, बल्कि अब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिटनेस कल्चर के लिए भी तेज़ी से पहचान बना रहा है। यानी हमारा उदयपुर जो ज्योति है, वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। और यहाँ कई मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब, स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमीज युवाओं को बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। तो शहर की हलचल में आज हम जिक्र करेंगे शहर के प्रमुख स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स अरेना। सबसे पहले बात करते हैं महाराणा भोपाल स्टेडियम की। ये उदयपुर का एक बड़ा और प्रसिद्ध स्टेडियम है जहां क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित होते हैं। आजकल युवाओं

0: टर्फ स्पोर्ट्स का क्रेज भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए इन्फिनिटी स्पोर्ट्स अरीना, द स्पोर्ट्स विला और पल्स स्पोर्ट्स एकेडमी जैसे प्लेसेस काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ बॉक्स क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और फिटनेस एक्टिविटीज़ के लिए मॉडर्न टर्फ फैसिलिटीज़ भी मौजूद है। नई जनरेशन के लिए प्लेयर्स के लिए एपेक्स स्पोर्ट्स एकेडमी, बेस्ट स्पोर्ट्स एकेडमी इन उदयपुर, जो प्रोफेशनल कोचिंग और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है।
1: हम स्विमिंग की बात भी अगर करें तो क्योंकि समर चल रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स या जगह जहाँ पे आप स्विमिंग सीख सकते हैं तो कई सारी जगह हैं, जैसे कि आप बीएन कॉलेज में जाएंगे तो एक भरोसेमंद आपको स्विमिंग पूल वहाँ पे मिलता है जो बहुत पुराना सा है, बहुत पुराना इन द सेंस कि वो एक रिलायबल जगह है जहाँ पे प्रोफेशनल कोचेस के देखरेख में बच्चों को, इवन जो जीरो से स्टार्ट करते हैं उन्हें भी स्विमिंग सिखाई जाती है। लाइफ गार्ड्स की टीम हमेशा तैनात रहती है, सेफ्टी की भी लगभग गारंटी ही रहती है कि हम अपने ध्यान अपना भी ध्यान रखें और हमारे साथ कोचेस भी हैं ही। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ें तो खेल गांव में भी बिगिनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, शहर के गोवर्धन विलास में, शोभागपुरा में, आरसीए मैदान में और आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी, आलोक स्कूल में भी स्विमिंग पूल्स हैं जहां पे आप स्विमिंग सीख सकते हैं। इन समर्स में अगर आप कोई सा स्पोर्ट सीख रहे हैं तो व्हाट्सएप करना ना भूलें कि कौन सा समर स्पोर्ट्स आपको अट्रैक्ट कर रहा है इन दिनों और आप सीख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ें तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात भी करेंगे। यहाँ शहर के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी बहुत सारी स्पोर्ट्स सुविधाएं हैं। इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, बॉक्सिंग रिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ बड़े टूर्नामेंट होते हैं, हॉकी और फुटबॉल के लिए बड़ा खुला हुआ ग्राउंड है, यहाँ प्रॉपर रनिंग ट्रैक बना हुआ है, इसके अलावा स्क्वाश कोर्ट है, डेडिकेटेड बास्केटबॉल कोर्ट है जहाँ सुबह शाम प्लेयर्स जमकर पसीना बहाते हैं।
0: और उदयपुर अब सिर्फ टूरिज्म सिटी नहीं बल्कि इमर्जिंग स्पोर्ट्स सिटी भी बनता जा रहा है। यहाँ के स्पोर्ट्स क्लब और अरीनाज युवाओं को हेल्दी लाइफस्टाइल, फिटनेस और करियर अपॉर्चुनिटी दोनों ही दे रहे हैं।
1: तो अगर आप बीएन कॉलेज में हॉर्स राइडिंग और ये तीरंदाजी की भी शूटिंग और राइफल शूटिंग रेंज भी अपने उदयपुर में अवेलेबल है, इस तरह बहुत सारी सुविधाएं हैं और उदयपुर के जो शौकीन खिलाड़ी हैं हर तरह की सुविधाएं हमारे शहर में अवेलेबल हैं और आप इन छुट्टियों में इन चीज़ों को सीख कर या इन पर अपना वो मतलब एक वो होता है ना परफेक्शन ला करके भी वक्त ये वाला बिता सकते हैं। आप हमें बताइए इन छुट्टियों में समर स्पोर्ट्स आपसे किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं, आप किस चीज़ को लेकर रुचि दिखा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर 9462697568।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और लिसनर्स कनेक्ट का वक्त हो गया है ज्योति, और संदेश भी आ चुका है। सबसे पहला संदेश आया है किरण कुमावत का, ये कह रही है खम्मा गनी विद्या मैडम, ज्योति मैडम नमस्कार, उदयपुर ये जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें आप जो भी गाने सुनाते हैं वो हमें बेहद पसंद आते हैं, आज जो आपने फुटबॉल के बारे में जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी, और मैडम हमारे बच्चे मैसी और रोनाल्डो के प्रशंसक है और इन्हें पसंद करते हैं, और आप जो सिटी अपडेट देते हो आईपीएल के बारे में वो सभी हमें अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच किरण जी।
1: और अब ये हमारे पास मैसेज है सेक्टर 4 से हिरण मगरी से, अशोक शर्मा जी कहते हैं कि आपने सुबह जो ये मॉर्निंग को और प्रोडक्टिव बनाए बताया ना, तो ये सुनकर आज मैंने सच में अपना फ़ोन रख दिया, नहीं तो रोज़ रोज़ सुबह उठते ही रील्स देखते देखते मेरी चाय ठंडी हो जाती थी, तो क्या बात है, ये आदत तो हर रोज़ के लिए होनी चाहिए, है ना अशोक जी। चलिए एक और मैसेज है हमारे पास, ये हैं देवर्ष खत्री जयश्री कॉलोनी से, 9 ईयर्स के हैं, लिखते हैं इनकी फेवरेट टीम है RCB। चलिए तो हम भी आपके साथ इस टीम को चेयर करेंगे और देखते हैं कि ट्रॉफी कौन सी टीम ले जाती है, वैसे हमारी जो पसंद की हुई टीम है वही ले जाए ना। चलिए गाना भी सुनते हैं फिर और मैसेज पढ़ेंगे।

0: लिसनर्स कनेक्ट में हम अगला संदेश पढ़ रहे हैं। ये कमल कुमार सोहाल का है, बालकृष्ण जी सोहाल का, न्यू केशव नगर उदयपुर से, और इनके साथ परिवारजन भी हैं। लिखते हैं कि फुटबॉल दिवस पे इन्हें याद आ रहा है कि विद्यालय ग्राउंड में फुटबॉल खेला करते थे। पुस्तकें मित्र हैं, ये भी इन्होंने लिखा है। इन्हें गीत अच्छे लगे हैं प्रोग्राम में। आकाशवाणी को काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, 90 साल हुए आकाशवाणी को, और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं, इनकी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हुई ही हैं। और लिखते हैं कि जो गाने इन्हें पसंद आए, इसके अलावा लिख रहे हैं कि हम फुटबॉल के अलावा इंडोर गेम्स भी खेल सकते हैं, जैसे कि कैरम, और उसके बाद हमारा जो फेवरेट, सबसे फेवरेट जो होता है ना, वो होता है अंताक्षरी, इसे लेकर सीरियस हो सकते हैं, तो अच्छी बात है। और इसके अलावा लिख रहे हैं कि ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फुटबॉल के लिए बड़ा हॉल और खुले मैदान की आवश्यकता होती है। 1980 में भोपाल नोबल्स विद्यालय में देख कर ही खुश होते रहे हैं। और ये इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि इनके बहुत सारे स्पोर्ट्स में रुचि है, इन्हें पसंद भी हैं, और साथ साथ में इन्होंने अपनी बेटी श्वेता का नाम भी लिखा है और डिम्पी सोहालका का नाम भी लिखा है। तो आप सभी परिवारजन हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं।
1: कुछ और संदेश भी बता दे ज्योति। रहमान कॉलोनी से रुखसाना बानू, इन्हें नमस्कार उदयपुर अच्छा लगता है, और जो हम आप जो जानकारी देते हैं वो सभी अच्छी लगती है। रुखसाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और संदेश विक्रम का, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा।
0: ये हैं चेतक सर्कल से दिग्विजय सिंह जी, रेगुलर लिसनर हैं, लिख रहे हैं कि आपकी बातें सुनकर हम सब पुराने दोस्तों ने लवकुश स्टेडियम में मिलने का प्लान बनाया है। अब वहाँ खेलेंगे तो क्या ही, पर हाँ, वहाँ की ट्रैक पर वॉक करते समय कॉलेज के दिनों की फुटबॉल वाली यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे। तो विद्या, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऐसे ही मिलते रहिए, लाइफ को इन्जॉय करती रहिए। उदयपुर इस शहर की सुबह जितनी हसीन है, उससे ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोगों का दिल और उनका कनेक्शन। मैसेज भेजते रहिए, बातें करते रहिएगा।
1: और अब लेते हैं इजाज़त आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
0: ज्योति।
1: तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और कार्यक्रम का अंतिम गीत इसी के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं, लीजिए सुने प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने

0: लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी, आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है

0: जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
1: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया, वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुर्जोर्जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।

0: हाथ गोला हाथ में लो।
1: ले लिया जनाब।
0: अब पिन रिलीज करो।
2: फेंको
1: फेंका जनाब।
2: अरे अरे ये क्या हुआ,
1: ये क्या हुआ? अरे बचो बचो बचो,
3: फटने जा
1: सब निकल जाओ,
3: सब निकल जाओ,
4: साथियों। हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा
5: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली की सी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
1: ये आदि क्या कर रहा है?
5: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
1: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
1: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
4: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
8: Sir,
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर,
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
8: सर,
4: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
5: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
4: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
5: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
1: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
9: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
1: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
10: जी जनाब।
6: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
8: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे

0: टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
1: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
1: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर!
1: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
1: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
2: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर

0: इंद्रपाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी, ध्वनियांकन मयंक कुमार, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग, उमंग,
2: उमंग, उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं यादों के झरोखों से, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे ऐसी शख्सियत का जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। जी हाँ, प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त, जिनकी आज पुण्यतिथि है। सुनते हैं इन्हीं पर फिल्माया प्रोग्राम का पहला गीत फिल्म हमराज से, आवाज महेंद्र कपूर की।

यादों के झरोखे से आज इसमें हम याद कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सुनील दत्त को। आपका जो किरदार था वास्तविक जीवन के बहुत करीब रहा, उनका व्यक्तित्व भी उनके किरदार की तरह उज्जवल और प्रभावशाली रहा। हिंदी सिनेमा जगत में सुनील दत्त को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर

याद किया जाता है जिन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। आपने सुनील दत्त बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। बलराज साहनी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता के रूप में उन दिनों स्थापित हो चुके थे। इसे देखते हुए उन्होंने अपना नाम बलराज दत्त से बदल कर सुनील दत्त रख लिया। सुने अगला गीत चिराग फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

0: लगता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से,
2: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया।
7: क्या हुआ?
6: नया फीडबैक चाहिए।
7: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
6: करेक्ट।
7: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया फीडबैक।
5: RBI कहता है,
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
8: यादों के झरोखे से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से, और आज हम याद कर रहे हैं फिल्म अभिनेता सुनील दत्त को। सुनते हैं अगला गीत वक्त फिल्म से। सुनील दत्त पर ही फिल्माया गया ये गीत, आवाजें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

गीत था फिल्म गुमराह से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की यादों के झरोखों से। इस कार्यक्रम की अगली पेशकश आइए सुने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, फिल्म का नाम आज और कल।

यादों के झरोखों से। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से। अगला गीत फिल्म तेजाब से, आवाजें शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश और साथियों की।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

ये गीत था फिल्म कर्ज से, आवाज़ें थी किशोर कुमार और आशा भोसले की। अगला गीत शैलेंद्र की आवाज़ में, फिल्म का नाम बॉबी।

प्रोग्राम की अंतिम पेशकश लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में फिल्म का नाम प्यार झुकता नहीं। इसी के साथ ही यादों के झरोखों से ये प्रोग्राम बस यहीं तक।

राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम गोखड़ा आप होनी रहा हो आकाशवाणी रे उदयपुर केंद्र। अब आ रहा हूँ अलका याग्निक की आवाज में ये लोकगीत। अगले लोकगीत आप होगा रागिनी राकेश कला प्रमेश प्रेमी चेतना अणसभरी आवाज में।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी
0: हाँ
4: आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
4: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: नमस्कार ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

राजस्थानी लोकगीतहरु कार्यक्रम गोखडा भुणी रह्या हो। आउँछ अबे हुणा मलेदास बद्री व्यास आणा दोइरी आवाज में यो लोकगीत। अणि मैं किस तरह हूँ कणी तरीका हूँ सोलह श्रृंगार करे वो बतायो है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर, ये है आकाशवाणी उदयपुर। 11:30 हो रहे हैं और ये वक्त है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। तो आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत में चंदन दास की गाई कुछ गजलें।

मौसमों के आने से और मौसमों के जाने से। चंदनदास की गाई गजलें आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
0: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
0: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
0: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बोल बोल के थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है,
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

श्रोताओं, चंदन दास की गाई गजलें आज आपने सुनी सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के ठीक 12 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और सबसे पहले आप सुनेंगे फिजा फिल्म का ये नगमा।

0: डुप्लीकेट इस फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना, आवाज कुमार सानू की थी। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आइए लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
2: अच्छा
1: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान। ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: आगे सैलरी? नहीं झुमके
6: ना,
5: पहले बचत,
6: पहले झुमके।
5: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
6: लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि
5: लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आइए अब सुनते हैं कुमार सानू के साथ लता मंगेशकर को, फिल्म जब प्यार किसी से होता है। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और ये है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र।

जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म का ये नगमा अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं शान की आवाज़ में दोस्ताना फिल्म का ये गीत।

हाईवे, इस फिल्म के इस गीत को अभी आपने सुना। आवाज़ एआर रहमान की थी। आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं दृश्यम 2 फिल्म का ये गीत। आवाज़ है जुबिन नौटियाल की।

जुबिन नौटियाल को भी आपने सुना, आइए अब सुनते हैं मोनाली ठाकुर और पैपॉन को, फिल्म दम लगा के हईशा में।

मुंह मुंह के धागे, मोनाली ठाकुर और पैपॉन दोनों की आवाजों में अभी आपने सुना दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह को मैरी कॉम फिल्म के इस गीत में।

अरिजीत सिंह को अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं सोनू निगम, आतिफ असलम, हसीम, अनु मलिक, इन सभी की आवाज़ों में मैं हूं ना फिल्म का ये गीत।

नाराज इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आप सुनते हैं मिस्टर एंड मिसेस माही, इस फिल्म का ये नगमा। आवाज बनिए और सागर की।

0: मिस्टर एंड मिसेस माही के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 1 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से।
1: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
2: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
1: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सलुम्बर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म

0: भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 1:05 हो रहे हैं। ये वक्त है कार्यक्रम महिला जगत का।

0: दोस्ती के बाद ज़िंदगी बदल गई। दोस्ती के बाद ज़िंदगी बदल गई, दोस्ती हुई तो हर खुशी ही मिल गई। अब तो हमें दोस्ती पे कुछ ऐसा गुमान है, हर दोस्ती हमारी हमारा अभिमान है। आज के महिला जगत कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो दोस्त देवबाला सोनी स्वीकारिए नमस्कार।
1: गीत सुख और दुख जीवन के दो रंग हैं, सुख और दुख जीवन के दो रंग हैं, सब सही है अगर श्रद्धा संग है। गंगा मैया को ध्यान में मलंग है, हैप्पी गंगा दशहरा कहने का ये एक नया ढंग है। सो श्रोता सखियों, मेरा भी स्वीकार कीजिए स्नेहिल प्यार भरा नमस्कार डॉक्टर रेखा जैन का। और श्रोता सखियों, मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये जो पर्व है उसकी आपको ढेर सारे गंगा दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ।
0: बिल्कुल,
1: और बहुत सारी जानकारी हम इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत आपको शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम आज के दिवस की, जो कि गंगा दशहरा दिवस है। और भी ढेर सारी जानकारियाँ इसी कार्यक्रम में चलती रहेंगी, तो पूरा प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा।
0: बिल्कुल, हम जानते हैं कि हमारा देश त्योहारों का और धार्मिक परंपराओं का देश है, और इन्हीं महत्वपूर्ण पर्वों में गंगा दशहरा का विशेष स्थान है। और यह पर्व माँ गंगा की धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। और यदि हम इसके अर्थ की बात करें रेखा, तो गंगा दशहरा का अर्थ यानी गंगा दशहरा दो शब्दों से मिलकर बना है, गंगा और दशहरा। गंगा का अर्थ है पवित्र नदी गंगा, जबकि दशहरा का अर्थ है 10 पापों का नाश करने वाला।
1: और जब आप बात करती हैं कि पौराणिक मान्यता इसकी है, और इसकी एक पौराणिक कथा भी कहलाती है कि राजा सागर के 60,000 पुत्रों की आत्मा की शांति और उद्धार के लिए उनके वंशज भागीरथ जो हैं, उन्होंने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वयं स्वर्ग से धरती पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना तीव्र था कि उसे रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। इसके बाद शिव जी ने एक जटा से, सिर्फ एक जटा से, गंगा को एक शांत और पवित्र धारा के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया।
0: और सखियो, गंगा नदी के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। इसे माँ गंगा कहा जाता है क्योंकि यह करोड़ों लोगों को जीवन प्रदान करती है। और गंगा नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक

0: और आर्थिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। इसका उपयोग पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में किया जाता है। और सखियों, इसके साथ ही कृषि, पेयजल और उद्योगों के लिए भी गंगा बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, और जब तुम गंगा दशहरा के महत्व की बात कर रही हो तो यहाँ देखिए कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नदी में स्नान करने से व्यक्ति के 10 तरह के जो पाप हैं उनका शमन होता है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक इस तरह के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। इस दिन गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक जब हम करते हैं तो सारी शुभ हमारी जो मनोकामनाएं हैं, शुभ कामनाएं, हाँ मनोकामनाएं मतलब किसी का बुरा करने की नहीं तो सारी अच्छी आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।
0: और आज के देखिए, आपके जहाँ भी जलाशय हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं और विशेष करके हरिद्वार में प्रयागराज की बात करें, बनारस की बात करें, तो अद्भुत संगम, मतलब इतना अच्छा संगम पे बहुत अच्छा दीपदान होता है, आरती होती है। और सखियों, ये तो बात करते हैं कि धार्मिक महत्व तो है, लेकिन इस दिवस का महत्व पर्यावरण की दृष्टि से भी है कि यह दिन हमें संदेश देता है कि पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि स्वच्छता रखना भी हमारा कर्तव्य है, तभी तो आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ उठा सकेंगी।
1: बिल्कुल, और एक बात और इसके साथ साथ कि कई लोग जो वहां नहीं जा पा रहे हैं स्नान के लिए, तो आप गंगा जल जो है वो थोड़ा सा अपनी बकेट में डाल के भी नहा सकती हैं, तो एक तरह से आपको एक फील तो जरूर से जरूर आएगा। और इस दौरान स्नान और दान के नियम भी हैं कि यदि आप इस दौरान, बिकॉज आपको पता है कि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और वो जो मास है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इस समय पर बहुत ज़्यादा दान का महत्व कहलाता है, नहाने का और दान का दोनों का। सो इस दौरान यदि आप गंगा नदी में जैसे नहीं हो तो मैंने बताया उस तरह से कर सकते हैं। साथ में कुछ पूजा और मंत्र है कि इस दिन जो है वो आप गंगा माँ की पूजा करें और नमो गंगाए विश्व रूपाए नारायणाय नमो नमः का जाप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी माना जाता है। और आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 प्रकार के जो चीज़ें हैं उनका दान कर सकती हैं, जैसे जल, अन्न, फल, वस्त्र, घी, नमक, तेल, शक्कर, पूजन सामग्री और दक्षिणा। और ये चाहें तो अपने घर में कोई ऐसे आपको लगता है कि जो भी कोई बाहर आता है आपके दरवाजे पर लेने के लिए तो आप उन्हें भी दे सकती हैं। उसके अलावा ये सारे जो दान दक्षिणा हैं वो आप अपने घर की बहन बेटे या भाणेज या घर में कोई, कई ऐसे परिवार में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं होते हैं, तो ये आप वहाँ भी दे सकती हैं। सो ये एक महत्व है इसका। और श्रोता सखियों, और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन इसी से रिलेटेड आइए सुनते हैं गीत।

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: सखियों, हम सोचते हैं कि बीमा एक तरह से जीवन सुरक्षा ही है, लेकिन आजकल बहुत सारे कई प्रकार के बीमा हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, पेंशन के लिए भी होता है, युवाओं के लिए भी होता है, तो बहुत सारी तरह के बीमा हैं। तो आज हम आपको सुनवाते हैं बीमा जागरूकता पर बातचीत। बातचीत कर रही है डॉक्टर रेखा जैन नाहा नाहटा से, आइए सुनते हैं।
1: तो आज हमारे साथ है नेहा नाहटा, आप LIC में ऑफिसर हैं और काफ़ी सालों से अपने इस फील्ड में जो है उनका काफ़ी अच्छा नाम है और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हैं। सो आज हमने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले नेहा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी, समस्त श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा नाहटा है और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि लोगों और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम है। इस फील्ड में काम करते हुए मुझे महसूस हुआ कि सही समय पर और सही इंश्योरेंस किसी परिवार की जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इसी सोच के साथ मैं लोगों को इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस समझाने और उन्हें बेहतर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने, यानी कि आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास करती हूँ।
1: आपने बात की आर्थिक सुरक्षा की, है ना? सो आर्थिक सुरक्षा जो है वो किस तरह से, आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि किस तरह से आर्थिक सुरक्षा होती है? भाई, हमने तो यही सुना है कि बीमा जो होता है वो आपकी लाइफ को सेव करने के लिए होता है, कि कहीं कुछ हो गया, भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, उस सिचुएशन में बीमा काम होता है, काम आता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आर्थिक सुरक्षा, तो वो कैसे होती है?
2: बीमा एक तरीके का सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। भविष्य में कोई अचानक खर्च या नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस आर्थिक मदद करता है। जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, इंश्योरेंस परिवार को पैसों की सुरक्षा देता है और मुश्किल समय में सहारा बनता है।
1: ठीक है, बेसिकली आप ये बताइए कि इंश्योरेंस है क्या, मतलब क्यों इंश्योरेंस करवाना चाहिए, क्या जरूरत है इंश्योरेंस करवाने की?
2: तो मैंने बताया कि इंश्योरेंस एक तरीके से होता है भरोसा। इंश्योरेंस सुरक्षा देता है आर्थिक, अपने जितने भी खर्च हो, नुकसान हो, आने वाले भविष्य को हमारे सुरक्षित करता है।
1: ठीक है, और इंश्योरेंस कराने के क्या फायदे हैं? सबसे पहले
2: बचत भविष्य के खर्चों के लिए होती है, जबकि इंश्योरेंस यानी कि बीमा अचानक आने वाले नुकसान से हमें सुरक्षा देता है, जैसे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें अब हमें सुरक्षा मिलती है पीछे परिवार वालों को।
1: हाँ, दो चीज़ें हैं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों का एक यही है ब्रेन के अंदर कि जो इंश्योरेंस कराया जाता है वो सिर्फ एक सुरक्षात्मक लहजे से, जैसे किसी परिवार का कोई मुखिया है तो जनरली यही होता था पहले के समय में कि भाई पुरुष का हमेशा इंश्योरेंस कराया जाता था, क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति एक ही है परिवार के अंदर। तो क्या इस वे में महिलाओं को भी आजकल जो है आप उनका भी इंश्योरेंस करती है?
2: जी बिल्कुल, महिलाओं, बच्चों, स्टूडेंट्स, हर जने के लिए सुरक्षा जरूरी होती है, तो हमें सबके लिए इंश्योरेंस, मतलब महिलाओं के लिए स्पेशल और प्लान्स हैं। हर एक कंपनी के, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए, पब्लिक सेक्टर में जाए, महिलाओं के लिए स्पेशल इंश्योरेंस, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में, उनके आने वाले किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, तो इसके लिए आजकल स्पेशल इंश्योरेंस के लिए वो बने हुए हैं।
1: ये तो इस तरह की कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं और उनमें ऐसे कौन से, उन स्कीम्स में ऐसे कौन से फायदे दिए जाते हैं
2: जी?
1: क्या ऐसा चीजें हैं जो उनको फायदा देती हैं?
2: जी, तो 18 से 55 वर्ष तक की महिलाओं के लिए, जिसमें उनके मासिक धर्म से रिलेटेड या फिर उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या इस तरीके के बहुत सारी उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके बीमारियों के खर्चों के लिए अलग अलग इंश्योरेंस बने हुए हैं।
1: मतलब इतना वृहद हो गया है इंश्योरेंस
2: सेक्टर। जी जी बिल्कुल, जो
1: कि है ना, सिर्फ आप ये मत सोचे कि किसी मिस हैपनिंग के लिए ही बना है, बल्कि छोटी छोटी और चीजों के लिए भी बना है। अब आप ये बात करें तो कई महिलाएं जो ऐसा है कि अभी यूथ हैं, यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाओं की क्यों बात करें, हम सब की बात करें, तो क्या यूथ भी जो है उनको इंश्योरेंस लेना चाहिए?
2: कम उम्र में लिया गया इंश्योरेंस, उसमें एक तो ये बेनिफिट है कि प्रीमियम कम होता है और बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिलते हैं, तो इसलिए कम उम्र में बिल्कुल करवाना चाहिए।
1: कई बार लोग सोचते हैं हम तो बीमार नहीं है, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी हमारे पास बहुत है, और वो सोचते कि नहीं क्यों कराएं हम, तो क्या कहना चाहती हैं?
2: जीवन में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता है, तो इंश्योरेंस परिवार को और पैसों की सुरक्षा देता है, सबसे मेन चीज। और

0: मुश्किल समय में सहारा बनता है, इसलिए करवाना ही चाहिए इंश्योरेंस।
1: ओके ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं युवाओं की और सबकी। तो मैंने ये और चीज़ देखी है, जैसे कि कई सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं हमारे जहाँ कन्या बालिका जैसे ही पैदा होती है तो उस समय उसके लिए इंश्योरेंस करवाए जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं कि कई बार उनकी एजुकेशन के लिए या उनके विवाह के लिए जब उनका जन्म होता है तभी से ही शुरू कर देते हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएँ ज़्यादातर होती हैं?
0: अब ऐसे तो
1: बहुत सारी योजनाएं
0: होती है, अलग अलग, मतलब जैसे बच्चों के लिए अलग योजनाएं हैं, युवाओं के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है।
1: स्पेशल फॉर गर्ल चाइल्ड। हाँ बिल्कुल।
0: तो ऐसे सुकन्या हो गया, ऐसे हम सुनते हैं ना गवर्नमेंट के काफी सारे हैं, उसमें अच्छा उनको प्रीमियम तो कम जमा कराना है पर उसका बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलता है।
1: ओके, जैसे आपने इतने समय से काम करती आई हैं इस सेक्टर में, ऐसे कोई वाकया आपको याद है कि कुछ ऐसा किसी फैमिली के साथ हुआ हो और उनको उसका फायदा मिला हो?
0: जी, मेरी क्लाइंट थी बाहर की, और तो उनके हस्बैंड का अचानक ही एक्सीडेंट में मतलब डेथ हो गई उनकी। तो एक घरेलू महिला के लिए तो बहुत बड़ी चीज है अपने बच्चों और खुद का अपना कैसे खर्चा चला है क्या चला, लेकिन उनका बीमा इंश्योरेंस मैंने किया हुआ था, इंश्योरेंस किया हुआ था मैंने, तो उनसे उनको बहुत 70-80 लाख रुपीस इंश्योरेंस से मिले हैं, तो उनके लिए एक बार लाइफ उनकी सेट हो गई।
1: हाँ, और आपको ऐसा मतलब उस समय कैसा महसूस हुआ खुद को?
0: बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हाँ। वो आज भी मुझे मतलब इतना कनेक्टिंग है वैसे, उन्होंने अपने बच्चों का भी इंश्योरेंस करवाया फिर मुझसे। हाँ।
1: मतलब कुछ भी
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ। जैसे एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यदि वो गृहस्थ है, हाउसवाइफ है, हस्बैंड जो है एक ही जरिया है, माध्यम है घर में पैसा मतलब रोजगार के लिए, और कोई भी नहीं है, और उस समय पर यदि हमको ये उस इंसान को ये हेल्प मिले, क्योंकि पैसा हर चीज में चाहिए होता है,
0: बिल्कुल,
1: और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है,
0: क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनका पूरा बॉन्ड मतलब ब्रॉटअप पूरा, तो पैसा तो चाहिए बच्चों की स्टडी में, उनकी शादियों में, तो बहुत पैसा लगता है।
1: हाँ, मतलब इंश्योरेंस इस तरह से
0: हेल्प करता है।
1: एक चीज और बताइए, जैसे आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो क्या आपको मुश्किलें आती हैं?
0: थोड़ी तो मुश्किलों का हर एक फील्ड में सामना करना पड़ता है महिलाओं को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि ये महिलाएं इसको अच्छे से अपना प्रोफेशन बना सकती है, फुल टाइम जॉब ना लेके एक साइड जॉब की तरह भी इसमें काम कर सकती है।
1: हाँ बिल्कुल, मैं यही आ रही थी कि जैसे आपने किया है तो क्या कुछ ऐसे भी हमारे लिसनर्स हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रही होंगी और उनका भी मन करता होगा कि हम भी नेहा जी की तरह लोगों की मदद करें एक तरह से, और अपना प्रोफेशन भी वो बन जाए, तो क्या ये प्रोफेशन सेफ है महिलाओं के लिए और कैसा है?
0: नहीं, ये प्रोफेशन बिल्कुल सेफ है, वो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में घरेलू महिलाएं एज अ मतलब एडवाइजर के रूप में काम कर सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से, अपना घर भी संभाल सकती है, काम भी कर सकती हैं, सब कुछ अच्छे से कर सकती है।
1: सो यू मीन टू से कि ये एक साइड जॉब की तरह हो सकता है?
0: बिल्कुल ये एक साइड जॉब की तरह ले सकती है।
1: हाँ, जैसे कई महिलाएं ऐसी हैं घर में बच्चे छोटे हैं
0: जी,
1: या उनकी फैमिली उनको फुल टाइम जॉब अलाउ नहीं करती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है?
0: जी बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये अच्छे से। हाँ,
1: और इसके लिए कोई स्पेशल एग्जाम्स होते हैं यदि एडवाइजर भी बनना है स्टार्टिंग में?
0: जी, कोई एग्जाम्स फाइट करने पड़ते हैं पर इजी प्रोसेस है, आप इजीली कोई भी घरेलू महिलाएं कर सकती है।
1: हाँ, मतलब
0: उन्हें 12th पास होना इंपॉर्टेंट है।
1: हाँ, मतलब उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक
0: है? 12th पास होना इंपॉर्टेंट है एडवाइजर के रूप में, उसके बाद आप काम कर सकते हैं फाइट मतलब एग्जाम फाइट करके।
1: हाँ, सो वो इजी है एग्जाम प्रोसेस?
0: इजी है बिल्कुल,
1: ज्यादा समय तो नहीं लगता उसके?
0: नहीं, इसमें थोड़ा सा बस सोशल होना पड़ता है महिलाओं को।
1: ये तो खैर उनकी क्वालिटी है, महिलाओं की ज्यादातर की, और स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होते हैं उनके तो काफी रिलेटिव्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं,
0: वो किटी पार्टीज भी अटेंड करती हैं, काफी सारी महिलाओं से जुड़ती हैं, तो ऐसे में वो अपना प्लान वगैरह समझा सकती है उसमें।
1: बिल्कुल, किटी पार्टीज है, उसके अलावा कई महिलाएं बहुत सोशल होती हैं, समाज के कार्यक्रम जाना, चाहे वो भजन के लिए हो चाहे कुछ और चीजों के लिए, तो एक दूसरे से इंटरेक्ट रहती है। वहां से भी आप उनको समझा के मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना बिजनेस जो है वो
0: बिल्कुल
1: डेवलप कर सकते। जी, और फाइनली आप एक अच्छे कॉज के लिए कर रही हैं, सो कभी ये नहीं समझ के। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि जैसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पहले होता था पुरुष, है ना, आजकल महिलाएं भी वर्किंग है ना, सो क्या महिलाओं के लिए ऐसे कोई पेंशन प्लान्स हैं?
0: जी बिल्कुल है, मतलब पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी महिलाओं के लिए स्पेशल प्लान है, क्योंकि महिलाओं का भविष्य भी सुरक्षित होना चाहिए। कल को उनके हस्बैंड रहे या ना रहे, पर घरेलू महिला फिर कहाँ जाएगी? उसके लिए इंश्योरेंस अगर उन्होंने करवा रखा है तो इसमें मतलब हस्बैंड की डेथ के बाद इंश्योरेंस माफ भी हो जाता है, प्रीमियम माफ हो जाती है। बहुत सारी चीजें हैं उनके, महिलाओं के लिए बेनिफिट बहुत ज्यादा है इसके लिए, और पेंशन प्लान्स भी बहुत सारे हैं।
1: हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कई लोग काम कर रहे हैं, उनको हमेशा लगता है कि

0: पेंशन प्लान लेने जरूर चाहिए, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है तो फिर भी आपका एक बार भविष्य सुरक्षित है, लेकिन बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए तो आपको खुद को ही करना है, तो इंश्योरेंस बहुत ही बेनिफिट है, जरूर लेना चाहिए।
1: सो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जैसे पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस दोनों, लाइफ सेविंग दोनों?
0: दोनों ही बिल्कुल।
1: ओके, वेरी नाइस कन्वर्सेशन विद यू, अच्छा लग रहा है, काफी ऐसा लग रहा है बात करते चले जाएं आपसे, लेकिन समय की अपनी सीमा है। चलते चलते ये बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे जो लिसनर्स हैं उनको?
0: मैं हर महिला से कहना चाहूंगी कि अपने सपनों को छोटा मत समझिए, खुद पे भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, और
1: मतलब जब आप बिलीव करेंगे अपने आप में, अपने ड्रीम्स
0: जी,
1: में
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आकाश बहुत बड़ा है।
0: जी बिल्कुल।
1: नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्टूडियो में आप आई, इसी तरह से हम जब भी हमें ऐसे लगेगा, मौका मिलेगा, तो हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे अपने स्टूडियो में। बहुत अच्छा लगा आप आई हमारे स्टूडियो में, और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको इतनी अच्छी, सुंदर, ज्ञानवर्धक और उनकी लाइफ के लिए, सेविंग के लिए जो है इतनी फायदेमंद जानकारी आपने हमें उपलब्ध कराई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी।
2: सखियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रेखा जैन की बातचीत डॉक्टर नेहा नाहटा से, विषय था बीमा जागरूकता, और आइए अब सुनते हैं गीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: ओके सैलरी,
2: हाँ।
1: नहीं झुमके
2: ना,
1: पहले बचत,
2: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि
2: हाँ?
1: लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: सुश्रुता सखियों, अब भी हमने आपसे बात की गंगा दशहरे पर, और आपके पता है कि आज भी एक स्पेशल डे है जिसे हम बोलेंगे कि विश्व फुटबॉल दिवस। विश्व फुटबॉल दिवस जैसे वर्ल्ड फुटबॉल डे हर साल 25 मई को आज ही के दिन मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को आधिकारिक रूप से विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, इस खेल के वैश्विक प्रभाव और एकता को मान्यता दी जा सके। इसलिए यदि हम बात करें कि ये एक खेल का जश्न नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर में शांति, कूटनीति और सहयोग को बढ़ावा देने का एक माध्यम है।
6: बिल्कुल, और इस दिवस का महत्व इसलिए भी है, ये दिवस हमें सिखाता है कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व विकास का माध्यम भी है। फुटबॉल खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और टीम भावना विकसित होती है, और फुटबॉल खिलाड़ियों को धैर्य, अनुशासन और संघर्ष करना सिखाता है। और ऐसे कि हम यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें पूरे शरीर की सक्रियता रहती है, और इसे खेलने से शरीर मजबूत और चुस्त बनता है।
5: बिल्कुल सही बात है आप कह रही हैं कि स्वास्थ्य की बात, उसके साथ साथ यदि ये देखें कि आज ही का दिन स्पेशली क्यों इसके लिए सिलेक्ट किया गया फुटबॉल दिवस के लिए, सो उसकी हम यदि बात करें तो इसका एक खास और ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि सोवी वर्षगांठ जो है यह तारीख 25 मई 1924 को हुए उस पहले अंतर्राष्ट्रीय

0: फुटबॉल टूर्नामेंट की याद दिलाती है जिसमें पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान दुनिया के सभी क्षेत्रों महाद्वीपों ने प्रतिनिधित्व इसका किया है। तो ये 100वीं वर्षगांठ है, इसीलिए आज का डेट चूज़ किया गया। और यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव 2024 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित करके इस दिन को आधिकारिक रूप से वैश्विक दिवस भी जो है वो घोषित किया गया। और यदि हम बात करें कि इस दिन की लोकप्रियता को देखते हुए फीफा जो है वो उसके द्वारा 21 से 25 मई तक विश्व फुटबॉल सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, और इसे देखने के लिए करोड़ों लोग उत्सुक रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना कि सामाजिक एकता को भी बढ़ावा देता है।
0: बहुत क्रेज है फुटबॉल का, सच बात है। और ऐसे ऐसे फुटबॉल के प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमाया है।
1: बिल्कुल, और जब हम रेखा बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य के बारे में, तो कितना फायदा है इससे कि इससे मोटापा, तनाव और आलस्य जैसी समस्याएं कम होती है। और फिजिकल की बात करें लेकिन मेंटल जो हेल्थ है वो भी बेहतर रहती है, क्योंकि खेल व्यक्ति में आत्मविश्वास जगाता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और सामाजिक एकता का प्रतीक तो है ही, क्योंकि जब भी कोई बड़ा फुटबॉल मैच होता है तो अलग अलग देशों और संस्कृतियों के लोग एक साथ जुड़ते हैं। मैदान में खिलाड़ी टीम भावना से खेलते हैं, वे एक दूसरे का सहयोग करते हैं और मिलजुल कर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। और सखियों, यही भावना समाज में भाईचारे और एकता को बढ़ाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और तुमने जैसे अभी जिक्र किया कि भाई हेल्थ अच्छी रहती है, है ना। तो यदि देखें कि जो लोग शारीरिक निष्क्रियता वाले लोग हैं, मेहनत कम करते हैं, तो उन लोगों में शारीरिक गतिविधियां ज्यादातर जनरली अभी देखा जाए, कई बच्चों में भी बहुत कम हो गई है। आजकल खेलना बच्चों को जनरली पसंद नहीं होता है और उसी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। तो नई आदतें अब लोग स्वास्थ्य के लिए सुबह जल्दी उठना, जिम जाना या योगा व्यायाम, ऐसी नई आदतों को अपना रहे हैं। और यदि हम बात करें कि संतुलन बनाने के तरीके, तो सक्रिय दिनचर्या, घर के काम करने के अलावा नियमित व्यायाम और सुबह के सैर को भी अपनी दिनचर्या में जो है इस दौरान शामिल किया जाता है। ये जो एक तरह से फुटबॉल का एक त्यौहार है, आप ये देखिए जैसे हमारे त्यौहार हैं जो गंगा दशहरा की हम बात करें, तो ये एक तरह का। और आप देखिए कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं फुटबॉल के जो कि विश्व स्तर पर पहचाने जाते हैं, और कई लोग तो उनके नाम के टैटूज अपने बॉडी पर, यंगस्टर्स हैं वो इतने क्रेजी हैं उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ फिल्म स्टार्स का क्रेज होता है उसी तरह से उन लोगों का क्रेज होता है। सो बहुत ही अच्छा गेम और बड़ा मज़ेदार सा ये गेम है। तो श्रोता सखी, मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अब आगे और भी है हमारे कार्यक्रम जिसमें हम बहुत सारी ढेर सारी आपसे बातें करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

0: जब हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे है ना, तुम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉल प्लेयर्स हो, तुमने कहा रोनाल्डो, मेसी। बिल्कुल सही बात है कि इतने अच्छे प्लेयर्स जो है रहे हैं। और अब बिल्कुल जब हम खेलों की बात करते हैं तो उसी तरह से यदि हम स्वास्थ्य की बात करें, है ना, ये प्लेयर्स को आप देखें तो उनका फिटनेस, उसका रीज़न है इतनी इतनी देर की उनकी एक्सरसाइज, उनकी प्रैक्टिस। सो सेम चीज़ यदि महिलाओं के लिए यदि हम बात करें कि दिनचर्या कैसे अच्छी हो, किस तरह से आप अपनी बॉडी को अच्छा फिट बनाएं, तो सुबह के यदि कुछ स्वास्थ्य और संतुलन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि नियमित जो योग दिनचर्या होती है तो महिलाओं को शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और आत्मविश्वास देती है,
0: बिल्कुल
1: और उन्हें टेंशन फ्री होकर और एनर्जेटिक बनाए रखने में हेल्प करती है।
0: बिल्कुल, और इसके लिए यदि आप शुरू करना चाहें तो एक आदर्श दिनचर्या की आप स्टार्टिंग कर सकती हैं। सुबह की शुरुआत में जल्दी से उठें, और वैसे भी गर्मी के दिन है तो सुबह 5 बजे उठने का टारगेट रखें, और अच्छा सा फ्रेश होकर उसके बाद जो है नॉर्मल ठंडा पानी पिएं, 10 से 15 मिनट का व्यायाम करें, और योग या सेर कुछ भी आप चूज़ कर लें जो आपका फेवरेट हो, या फिर डांस भी कर सकती हैं, है ना, कोई क्लासिकल है, या अभी भजन पे भी आप नृत्य करके और अपने आप को जो है उससे बहुत खुशी मिलती है। सो ये भी एक वे है आपके शरीर को अच्छा सा फिटनेस देना, मेंटेनेंस देना। और उसके साथ एक फ़ायदा और होगा कि आप जब ये प्रैक्टिस करेंगी तो कहीं भी किसी ओकेजन में करना है तो आप इजीली कर पाएंगे।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, क्योंकि इसमें 12 आसनों का समावेश होता है जो कि पूरे शरीर को सक्रिय रखता है। और भी यदि महिलाओं के लिए हम विशेष योगासन की बात करें तो भुजंगासन कर सकती हैं, इससे पेट और कमर संतुलित होते हैं, मजबूत होते हैं। ताड़ासन कर सकती हैं, वृक्षासन करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। पवन मुक्त आसन कर सकती हैं, पाचन तंत्र को मजबूत करता है।
0: और बालासन कर सकती हैं।
1: बिल्कुल, और बालासन कर सकती है, तनाव और थकान जो कम करता है। और कई आसन तो ऐसे होते हैं जो हम कुर्सी पर बैठकर भी धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और भी ऐसे प्राणायाम्स भी हैं उनको यदि आप करती हैं, प्राणायाम करने के बहुत सारे फायदे हैं। बीपी से आपको निजात मिलती है, लो बीपी हाई बीपी सभी कंट्रोल होते हैं उसके अंतर्गत। साथ साथ प्राणायाम से आपको मेंटल पीस और जो है अच्छा फील होता है, आप अपनी सोल से कनेक्टेड होती हैं जब आप योग करती हैं, तो योग के तो ढेर सारे बेनिफिट्स हैं। तो श्रोता सखियों, हम तो यही चाहते हैं कि आप अपने

0: में एकदम फिट रहे, हंस मस्त रहे, हंसती रहे, खुश रहे और हमारा कार्यक्रम सुनती रहे। तो श्रोता सखियो, अब हमारा कार्यक्रम भी जो है वो समाप्त होने को है। आज्ञा लेते हैं आपसे,
1: नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

महिला जगत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं एक बार फिर से फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

आराधना। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज़ में ज्वेल थी फिल्म का ये गीत।

ज्वेल थीफ, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। अब सुनते हैं हम जसपाल और साथियों की आवाज़ में इस फिल्म के गीत को।

गीत गाता चलो ओ साथी मुस्कुराता चल, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को। ये फिल्म है अभिमान।

तो श्रोताओं, ये था फिल्म संगीत। और अब हम आपको जानकारी देंगे विकास चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर। दोस्तों, आज भी हमारे देश में कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां की महिलाएं लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाती हैं और इसके धुएं से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, साथ ही लकड़ी का धुआं पर्यावरण को भी दूषित करता है, जो गाँव के सभी लोगों के लिए बीमारी का कारण बन सकती है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी जरूरतमंद महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना बनाई, ताकि रसोई को धुआं मुक्त बनाया जा सके और पर्यावरण भी शुद्ध रहे।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को बिना किसी सुरक्षा जमा के एलपीजी गैस सिलेंडर, रेगुलेटर और गैस चूल्हा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक एलपीजी रिफिल पर 300 रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। इसे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण और गरीब महिलाओं को लकड़ी, कोयले, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन से होने वाले धुएं और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। वर्तमान में इसका उन्नत रूप उज्ज्वला 3.0 और उज्ज्वला 2.0 संचालित है। पात्रता यह केवल महिलाओं के लिए है। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ये सिर्फ महिलाओं के लिए पात्र एक योजना है। आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता हो या सरकार द्वारा निर्धारित वंचित श्रेणियों में से हो, आवेदक के नाम पर एक सक्रिय राष्ट्रीयकृत बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य निवास प्रमाण पत्र, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति। इसका आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन फॉर्म भरा जाता है, न्यू उज्ज्वला कनेक्शन का विकल्प आपको वहां पे मिलेगा, जहां पर फॉर्म जमा करने के बाद में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद में आपको मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान

0: किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर विकास चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 2:15 होने को है। आइए अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12 की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों

0: से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। ये वक्त है किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: राम राम नानू भाई, राम राम।
1: राम राम रेखा भाई सा, राम राम। और कृषि जगत कार्यक्रम होने वाला अगले किसान भाई बहना ने अपनो राम राम, राम राम सा। देखो सा कार्यक्रम और टेम भी, और कार्यक्रम में देखो बात बात रे जानकारी देखो आप किसान भाई बहना वाते लावा हाँ जन में देखो आप खेती बाड़ी संबंधी जानकारी लावा, लारे लारे जो कृषि योजना है बनारी जानकारी लावा। और देखो आना सब में कठे न कठे जो सरकार है वनडी भी मदद बहुत जरूरी है। देखो सरकार जो अपना सहायता करे तो सरकार रे अगर जो सहायता है वनडो किसान भाई बहन लाभ ले तो घने हाँचो लाभ है। और वन में ई मित्र जो है वो बहुत अच्छी सेवा प्रदान करे है।
0: बिल्कुल सा। और अंडीज बात करें आप ही तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो कि अड़ी योजना रे तहत नया पंजीकरण, ई KYC, आधार लिंकिंग और बैंक खाता में आव वाली जो

0: प्रदान करें और अंडे वाते भी ऑनलाइन जो आवेदन है वे भी ई मित्र रे माध्यम कर सके है।
1: बिल्कुल सर, देखो बात करें अभी राजस्थान तारबंदी योजना री, तो अणी में भी नील गाय और आवारा पशु वे वणा ने फसलों बचावा रे वास्ते खेत में चारों तरफ कांटेदार तारबंदी करवा पे भी अनुदान मिले सा।
0: बिल्कुल सही। और जटे देखो खेत तलाई और डिग्गी योजना री अगर आप बात करा, तो खेत तलाई और डिग्गी योजना में देखो वर्षा जल जो है अंडो संचयन और सिंचाई सुविधा रे बेहतर बात है जो है किसान भाई बहन अपने अड़े बड़े जो तालाब है या पे जो डिग्गी है वनने अगर बनाना चाहे तो वन में भी देखो सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जावे। जटे किसान भाई बहन देखो पाणत करे तो देखो सिंचाई रे बात है, देखो वनापा देखो तालाब है या वटू जो पाइपलाइन लेनी है तो सिंचाई पाइपलाइन अनुदान रे बात है भी देखो कूड़ो या नलकूपू खेत तक पानी ले जाओ आते जो पाइप खरीदवा रहे बात है देखो सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जावे वनने भी देखो आप ई मित्र रे माध्यम आवेदन कर सका। हाँ
1: देखो संवाद करें आप ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना री, तो अणी में भी प्राकृतिक आपदाओं कीट वे या बीमारियां वे वंडे कारण फसल अगर बर्बाद हो जावे तो वंडे वास्ते भी आर्थिक सुरक्षा अपने मिले सा।
0: और देखो जटे आप अंडी बात कर रहे हो तो वन में जो है ड्रिप और स्प्रिंकलर फंवारा सिंचाई योजना री अगर आप बात करा तो आप जाना कि कम पानी में देखो अधिक सिंचाई करवा बात है जो आपा है बूंद बूंद सिंचाई विधि है या पचे फंवारा सिंचाई विधि है अंडो उपयोग करा तो अंडे माई ने भी देखो अपने खरीदवा रहे बात है देखो भारी अनुदान की जरूरत हुए तो अणमें भी कटे न कटे अनुदान रे बात है आवेदन करवा बात है जो है ई मित्र कृषि योजना में देखो अपने लाभदायक साबित हुए। अब अणमें कई प्रकार देखो आप कार्य कर सका वनडे बारे में भी देखो और जानकारी कराऊंगा, लेकिन वणु पहला को तो किसान भाई बहनों मनोरंजन करा और हुना एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो देखो रेखा भाई सही होते उन्हें प्यारों से राजस्थानी लोकगीत और लाला रहुणिया संदेश। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। आप बात कर रहे हैं ई मित्रों कृषि योजना का जो लाभ है वंडी बात में। तो देखो ई मित्र द्वारा आप बात की थी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, कृषि यंत्र उपकरण अनुदान योजना है, खेत तलाई योजना है, तारबंदी योजना है, पाइपलाइन अनुदान योजना है, फसल बीमा योजना है, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, अंडे अलावा भी नरी हरी जो योजना है वो जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो किसान भाई भी अंडो लाभ ले तो अंडे वाते कणे कणे चीज़ें और ध्यान रखना चाहे कई दस्तावेज वे वंडी जानकारी करावा सा।
3: बिल्कुल सा। तो सब पहला दस्तावेज रही अगर आप ही बात करा तो जन आधार कार्ड जो कि राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजना है वड़ा सबरे वास्ते अनिवार्य है। वंडे साथ में आधार कार्ड भी अनिवार्य है। लारे लारे जमीन रा कागजात जनी में जमाबंदी री नकल जो कि 6 महीनों ज़्यादा पुरानी नहीं बनी जावे।
2: बिल्कुल सर आना दस्तावेज रे आप बात की थे। और अंडे लारे देखो सरकार द्वारा जो योजना चलाई जावे वंडो जो अनुदान या वंडो जो लाभ है वो देखो सीधो आपने बैंक खाता में आवे। अंडे बात है देखो किसान भाई बहन पा जो बैंक खातों में चावे पासबुक री कॉपी बनी चावे ताकि जो पया है सीधा सब्सिडी में जो आप आवे वे सीधा आपने खाता में आई जाए। अंडे अलावा देखो आवेदन रे बात है आपने आवेदन करता जो है वनने देखो पासपोर्ट साइज रा फोटो है, एक मोबाइल नंबर जो कि आपने जन आधार या पचे आधार लिंक पे क्योंकि टेम टेम पे जो OTP आवे वंडी सहायता हूँ देखो आपरो कार्य जो है वो आसानी हूँ वही सके है।
3: बिल्कुल सर। अंडे साथ में जो भी यंत्र या आप ही उपकरण खरीद रहे हैं वणी स्थिति में डीलर द्वारा दिए गए जो कोटेशन वे वो भी मिलना चाहे सर।
2: और देखो अगर आप ई मित्र पे जा रहा हो तो ई मित्र के माध्यम देखो आप आवेदन कर सको। दो तरीका है, या तो देखो ऑनलाइन आवेदन करो या पचे आवेदन फॉर्म भरने। अंडे बात है आप ई मित्र क्रियोस पर जाइने अपना जो गांव या शहर हो जो नज़दीकी ई मित्र केंद्र है वन पर जाइने वनडो जो संचालक है वन पर जाइने आप बात करो कि कणी कणी योजना में देखो किसान भाई जो है वंडा जी दस्तावेज है वंडी जो खेती री भूमि है वनडे आधार पर वनने कई लाभ मिल सके। तो वे सब देखो आप ऑनलाइन आवेदन अगर आप दे दोगा तो भी आपको काम भेजेगा और नहीं है तो फार्म भरने आप संचालक जो है वरने आवेदक ने दस्तावेज जमा करेंगे आप फार्म भर सको और अणा योजना रो लाभ ले सको सर।
3: बिल्कुल सर। या तो आप ही बात की दी ई मित्र जुड़ी तक की कृषि योजना रो लाभ किस तरह ले सका सर। अब एक राजस्थानी गीत और सगला किसान भाई बहन उन्हें ही दसा।
2: बिल्कुल।

0: तो देखो ये तो उन्हें प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत, और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। आप किसान भाई बहन ने देखो आप जानकारी दिया कि किसान भाई बहन जो है देखो अपने कम पानी वाला जो क्षेत्र है उनमें कई प्रकार नेपियर घास री खेती करने देखो अच्छो लाभ कमाई सके। आपा सब जाना कि कम पानी वाला क्षेत्र में डेयरी किसान जो है वे देखो नेपियर घास जो है वह अगर लगावे तो वड़ा ने एक बार लगाओ और बाद 5-7 साल तक देखो लगातार जो हरो चारो है वो अणि घास प्राप्त हुए, और बार बार बुआई री जो लागत है और मेहनत है देखो वह भी बचे। क्योंकि अण में आपा जाना कि 14-18% तक देखो प्रोटीन वे जो दुधारू पशु रहे दूध उत्पादन ने देखो बढ़ावे और बढ़ाने लाभ दे सके हैं।
1: बिल्कुल सर, अगर सुपर नेपियर गैस की बात करा तो सब तेज बढ़वार पत्ता में काटा नहीं वेवे और पशु इन्हें चाऊ भी खावे सा।
0: बिल्कुल सा। और देखो जेटे आप जायंट किंगरी अगर आप बात करा तो यह देखो बाडो मास और बायोगैस रे बेहतरीन लंबाई वाली घास में सूखा सहन करवारी क्षमता में, और पानी में भी देखो कम पानी जो वे वन में भी यह अधिक पैदावार दे सके। तो नेपियर घास देखो अगर आप लगावरी अगर आप बात करा तो बीजा रे बजाय देखो ने गन्ना रे तरह कटिंग करने भी लगायो जा सके, और वावने ने पहला मिट्टी ने भुरभुरो बनाना जरूरी है सा।
1: खेत की गहरी जुताई करना, अपने पाटो भी लगानो है या जो फसल है वह सालों साल चलती रहे सा।
0: और अण में देखो आप खेत में देखो अगर अच्छी सड़ी लगी गोबरी खाद या पचे केचुआ खाद अगर मिट्टी में मिले ना अगर वावनी करा तो वणु कई वे देखो अच्छो लाभ मिल सके। और देखो हवा और धूप जो है अंडे वाते देखो अंडी सही दूरी आवश्यक है, और कलम ने जमीन में देखो बोई ने आपने देखो गांठ अगर वंडे जमीन में रहेगा तो वह अच्छे बढ़वार देगा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा अन्य प्रकार अगर आप ही नेपियर घास की खेती करेंगे तो आप ही कैसे अंडो उत्पादन आप ही अच्छो ले सकेंगे सा।
0: और देखो कार्यक्रम में चलता चलता को तो एक प्यारा सा राजस्थानी लोकगीत और होना सा।
1: हाँ सा।

0: तो देखो रेखा भाई, सही हो तो अपने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और घड़ी रे आड़ी देखा तो कार्यक्रम में अपना चालवारो टेम वेरो तो चाला सा राम
1: राम,
0: राम
1: राम सा।
2: किसान भाइयों ने सुना अभी अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी है। दोपहर के 3 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें पूछा गया है कि पिछले साल एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कितना पालन किया गया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाश

आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के ठीक 3:05 हो रहे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। अगली सभा के प्रसारणों के साथ शाम 5 आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। श्रोताओं, आइए सभा के आरंभ में जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण।
1: राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members.

0: years. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार. हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर, और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद, और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ. और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में.

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वे ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलॉन्ग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीती 30 सितंबर 2000

0: 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy, Palliswamy, Chikitsa, Gastroenterology.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: Shri
1: guidelines.
2: Shri Piyush Pandey, Marnoprant, Kala Vigyapan, unki patni Shrimati Neeta Joshi.
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987, व्हेयर हिज एल्बम पुरब्यातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुने रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
2: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
0: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
1: She boasts quiet dignity, ethical integrity, and unwavering

0: unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect
1: Shri
0: within the artistic
1: Janardhan
0: community.
1: Bapu Rao Bothe, Samaj Seva.
2: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami
0: to
1: Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant Padma Shri se sammanit hota hua.
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसर के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है. 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लुपुआ से आती हैं.
0: श्रीमती देवकी अम्मा रिलाइड ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट कंडीशंस फॉर ग्रोइंग प्लांट सैपलिंग्स एंड यूज्ड मल्चिंग ऑर्गेनिक मैन्योरिंग फ्रॉम होम कैटल, केयरफुल रिटेंशन ऑफ लीफ लिटर एंड थॉटफुल वाटर मैनेजमेंट. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: People's
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर रामचंद्र
2: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है.
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है.
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा.
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए.
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
1: needs. Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है. मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे

0: संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए, उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
2: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: Well, through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Shri Mir Hazi Qasim Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Shri
1: Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri
1: as well.
2: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: Aur ab bari is 23 varshiya khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number 1 hain और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रेकॉर्ड।

0: record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
1: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
2: Vijay Kumar ji, CRPF ke purv mahanideshak rahe hain aur sankatpurn mishnon mein aapne bahut mahatvapurn bhumika nibhai hai.
0: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety
1: standards. Shri Devba Lad, Dada Lad, Krishi.
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
2: 69 varshiya Dr. Mandal, interventional cardiologist hain. Aapne shiksha aur swasthya ke kshetra mein desh ki khoob seva ki hai.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Buddh Rashmi Mani. राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में.
0: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
2: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है.
0: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी.
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने

0: जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: मुखोपाध्याय
2: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: चौहत्तर वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition,
2: which has Shri been supplied to the Pajanivel Khel Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mammalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s. As secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti, he revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important
2: दीपिका रेड्डी कला नृत्य।
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।

0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
0: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नृत्य।
1: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
2: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी व्हिच वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी।
0: श्री यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री यमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए यमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan evam Engineering.
1: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खास तौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिवशंकरी कंप्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रिफ्लेक्टिंग हर अर्ली एकेडमिक एक्सीलेंस। शी वाज आल्सो सिलेक्टेड एज द वुमन ऑफ द

0: Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: Sridhar ji, आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
0: डॉक्टर श्रीधर इज एन

0: और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस काला आजार में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड काला आजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। He has published extensively in academic journals including NEJM and
2: Dr.
1: The Lancet,
2: S. G. Sushil Amma, Samaj Seva.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein ek Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर।
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ।
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.

0: प्रोफेसर जूसर वासी आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
0: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है. खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
0: Gambhir Singh Ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley War, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं.
1: Shri War has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Route Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति.
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए. धन्यवाद महोदय.

0: can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओब इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको ले चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को हैं। आइए एक बार फिर जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग

0: पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा के पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6:05 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है मशहूर निर्देशक करण जौहर का। करण जौहर एक एक्टर भी हैं, क्रिटिक भी हैं, और आज उनका जन्मदिन है। तो आइए फिल्म संगीत में उन्हीं की फिल्मों से सुनते हैं कुछ गीत। पहला गीत सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वरों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे करण जौहर की फिल्म से ये खूबसूरत गीत, उन्हीं के निर्देशित की हुई अगली फिल्म जिससे ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। अभी जो गीत आपने सुना वो था कभी खुशी कभी गम से, आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की थी। और जी सुनिए करण जौहर की ही फिल्म से अगला गीत, फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, संगीत जतिन ललित का।

दोस्तों आज आपको गाने सुनवा रहे हैं कुछ ऐसे खूबसूरत गीत जो निर्माता जो निर्देशक करण जौहर के ये गीत हैं। और आज क्योंकि करण जौहर हैं, उनका बर्थडे है, उनके बर्थडे के लिए आज उन्हीं की फिल्मों से कुछ खूबसूरत गीत हमने लिए हैं। करण जौहर, जिनके पिता यश जौहर एक मशहूर फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक थे, उनकी माता हीरू जौहर हैं और जो प्रसिद्ध निर्देशक यश चोपड़ा जी की बहन भी हैं। करण जौहर, जिनकी शिक्षा मुंबई के ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल में जिन्होंने पढ़ाई की है और एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में और फ्रेंच भाषा में मास्टर की डिग्री भी इन्होंने हासिल की है। करण जौहर ने अपना डेब्यू 1998 में पहली फिल्म कुछ कुछ होता से किया और उनका जन्म जो है वो 25 मई 1972 को मुंबई में हुआ है। तो करण जौहर की ही अगली फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं एक और गीत। फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। श्रोताओं, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, फिल्म संगीत में आपको सुनवा रहे हैं करण जौहर निर्देशित कुछ ऐसी फिल्मों के गीत। आज करण जौहर का बर्थडे है और उनके बारे में बताते हैं कि करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से 1995 में की और उनका पहला डेब्यू उन्होंने 1998 में कुछ कुछ होता है से किया, और जो बतौर निर्देशक उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और इस फिल्म से ने रातों रात करण जौहर को एक रॉक स्टार, जी हाँ, ऐसा निर्देशक बना दिया जिनका नाम हर एक की जुबान पे था। फिल्म संगीत में चलते चलते आइए करण जौहर की ही फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत, शेखर सलीम नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: श्रोताओं, फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉक्टर

0: एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सत्रह अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
2: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारा के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पुल, दीवाने आम, दीवाने खास

0: सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में 2 नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
1: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
2: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए, जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पन्ना, कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई

से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुककर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों एनसीडी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। CMHO डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक MD बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। काल सांचू सीमा चौकी माथे प्रहरी सम्मेलन माए शामिल भेला। और नौतपा सरू भेवन सागई प्रदेश माए गर्मी रो जोर और बध्यो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। इस साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानु नवाजी चिया। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कला रा हलका में योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी चिया। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी चिया। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां माए प्रदेश रा भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढंडा चराता थका वारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख लेवनो शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावन हासिल कीनी। वे डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माई कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कानियों नवाजी चिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यान जोग है कि साल 2026 सारू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माए और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी रे मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इन्हें बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनता ई अभियान माई शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी न बचावन वाणा प्रबंधन और पाणे तू जुड़ी परियोजना रा कामा रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल 3 खास बंधा ईसरदा, गलवा और बंध बरेठा निकला है। मुख्यमंत्री भरतपुर रा बंध बरेठा बंधा माथई जल पूजन कर अभियान री शुरुआत कीनी। ई मौके वे राज्य माए पानी बचावन और पारंपरिक जल स्रोता ने और बेहतर बनावन रो राज्य सरकार रो वायदो दोहरायो। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत कई कार्यक्रम राखी चिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिला रा सांगोद माए, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत पाली माए, विधायक राजेंद्र भांबू झुंझुनू माए और विधायक शैलेश

0: कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
1: रेलवे गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुबिता सारो गुजरात रा भावनगर टर्मिनस और दिल्ली रेशा कोर बस्ते बीच हर सप्ताह खास गाड़ी चलावन रो फैसलो किन्नो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी तीनी। वे बतायो कि आ गाड़ी 29 मई 27 जून ताई हर सप्ताह चलाई जावेला। आ रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट वैती जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत ऑनलाइन अर्जी देवन सारू पोर्टल काल 15 दिन सारू खोलियो जावेला। देवस्थान और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत आज पाली माए आ जानकारी टीनी। वे बतायो कि योजना रा तहत बुजुर्गों ने रेल और हवाई जहाज रे जरिए मुफ्त तीर्थ करायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माए खास समाचार एक फेरू सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। और नौतपा सारू वेवणसा गई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए होगा उनका खास कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रेखा भाई साहब, राम राम।
1: राम राम नानू भाई, राम राम
0: खेती और घर कार्यक्रम होने वाला अगला ही किसान भाई बहना ने आपनों राम राम
1: राम
0: सा।
1: सा।
0: देखो सा, कार्यक्रम में आया और खेती बाड़ी री जानकारी लाया। लारे लारे देखो कृषि संबंधी जो योजना है बनारी जानकारी भी आप लावा, और लारे लारे मौसम रो हाल और राजस्थानी लोकगीत लई नावा। तो आज चौपाल री बात में देखो किसान भाई बहना वाते कई जानकारी लाया हो सा।
1: बिल्कुल सा जानकारी लाया हाँ, पशु चारा उत्पादन री।
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि पशुआरे अच्छा स्वास्थ्य और अधिक दुग्ध उत्पादन रहवाते उत्तम पशु चारा उत्पादन देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जाना कि साल भर पौष्टिक हरो चारो प्राप्त करवा रहवाते किसान ने चारा री फसल रो सही चुनाव और सही समय पर अगर वे प्रबंधन करे तो वहाँ ने पशु चारो जो है वो अच्छी तरह मल सके है।
1: देखो साहब, मुख्य चारा फसलारी अभी बात करा तो रबी चारा फसल में बरसीम, जई, रिचका, लुसर्न है सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हो। रबी रे मौसम ने जड़ी आप बात कर रहे हो तो उनमें बरसीम जो क्यों वो देखो हरा चारा रो राजो है और अन्य बेहद पौष्टिक और रसीलो भी क्यों जावे, उनमें प्रोटीन री मात्रा बहुत अच्छी है। यदि कि जई री अगर आप बात करा तो यो ऊर्जाओं भरपूर चारो है और अन्य देखो अकेला या बरसीम रे लारे मल ने बोई सका। हाँ
1: देखो सर, रिचका और लुसर्न ने री बात करा तो यो बहुवर्षीय और कई साल तक चलवा वाली फसल है, जो कि दलहनी फसल है, जो कि पशुओं वास्ते बहुत फायदेमंद वैसा।
0: और जटे देखो खरीफ चारा फसला रे अगर आप बात करा तो अणमें देखो आप रे जवार है, बाजरा है, मक्का है, नेपियर घास है, या देखो अणमें आवे। और जटे जवार री बात करा तो यह कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देवे। और देखो बाजरा री जटे बात करा तो सूखा क्षेत्र रे वाते यह बेहतरीन पौष्टिक चारो है, और मक्का और नेपियर घास कई

0: का बताओ सा।
1: देखो साहब, मक्का की अगर बात करें तो जो साइलेज है जिन्हें कि आप अचार भी कहवा, वो बनावरे वास्ते मक्का सब उत्तम मान्य गयो है सा।
0: और जेटा देखो नेपियर घास रे अगर आप बात कर रहे हैं तो यह एक बार लगाओ पर कई साल तक देखो अपना हरो चारो देवे है। और जेटा साल भर हरा चारा उत्पादन तकनीक रे अगर आप बात करें तो पशुपालक भाई बहना रे सामने देखो सबसे ज़्यादा समस्या आवे तो अबार गर्मी री बेरा मई और जून में और अक्टूबर नवंबर महीना में यदि की देखो पानी वे या पचे सर्दी री शुरुआत वे तो यदि हरो चारो कम हुए तो अंडे बाते किसान भाई बहन जो है बहुवर्षीय चारा फसल अपने खेत रहा एक हिस्सा में लगे दे जन में नेपियर घास या गीनी घास आपा कही सका जो साल भर कटाई कर रहे सा।
1: देखो साहब, बात करें आप ही मिश्रित खेती री, तो अनाज वाला चारा जिस तरह की जई अजवार, अंडे साथ में दलहनी चारा जिस तरह बरसीम लोबिया अड़ा सबने आपने मिले ही ने बोण होए अणियों जो चारा री गुणवत्ता वेवे वा भी बढ़िया रेवे सा।
0: और जेटे देखो उन्नत चारा संरक्षण तकनीक रे अगर आप बात करा तो यदि देखो चारो ज़्यादा वे या पचे भविष्य में जनटम मंडी कमी वे मंडे वाते सुरक्षित रखो आते जो आप बात करिए साइलेज और में मक्का है जवार है बाजरा है ऐसा रसदार जो है वना ने चारों ओर पंख रहित जो है खड्डों वन ही ने वन में दबाई ने अगर किण्वन क्रिया करावा तो वणु कहे कि हरो चारो नि व्यवापे पशु जो है अणि चारा रो उपयोग वर्ष पर्यंत कर सके। और जटे हे चारा रे अगर आप बात करा तो यो कही है
1: देखो साहब, बरसीम और रिचका जैसी जो फसल वे वे वो फूलावरी अवस्था में काटने आपी धूप में सुखाने सुरक्षित करना, अणियों पत्तियां भी सुरक्षित रहे और पोषक तत्व भी नष्ट नहीं हुए सा।
0: तो और देखो जेटा चारा उत्पादन रे आप बात कर रहे हैं तो उत्पादकता बढ़ावा रे बात है देखो किसान भाई बहना ने चाहे कि उन्नत बीज मारो चयन करे। और देखो संतुलित खाद रे अगर आप बात करें तो चारा री फसल में नाइट्रोजन रो सही इस्तेमाल तेजी हूँ देखो वना री बढ़वार में मदद करे लेकिन हरा कटाई रे बाद तुरंत यूरिया देखो नहीं डालो। और कटाई री जटे बात करा तो चारा में देखो ज़्यादा अगर वो परिपक्व वही गयो तो वणु पहला आपने काट लेना चाहे क्योंकि यदि फसलों में 10-12% देखो फूल आवा लागे तो कटाई रे बात सही टाइम वे क्योंकि उनमें प्रोटीन और पाचनशीलता जो है वह सबसे ज़्यादा वे है सा। तो अगर किसान भाई अनेक प्रकारों देखो पशु चारा प्रबंधन रो उत्पादन करना चाहे तो वह अने टाइम पे अगर अने चीज़ों का रो ध्यान रखेगा तो साल भर वना ने हरा चारा रही या पशु चारो जो है मंडी उपलब्धता बनी रहेगा। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा तो को तो एक प्यारो सा राजस्थानी लोकगीत होना सा।
1: हाँ सर।

0: तो देखो सा, यो तो होने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। अबे को तो किसान भाई बहना ने मौसम संबंधी जानकारी और सामान्य कृषि की जानकारी दासा।
1: हाँ सर,
0: देखो मौसम विज्ञान विभाग जयपुर प्राप्त सूचना रहे आधार पर आगामी दिनों में देखो मौसम शुष्क रहे वाली संभावना है। हवारे गति री जटे बात करा तो 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रे वेगू दक्षिण पश्चिम चालवा और अधिकतम तापमान 41 से 42 और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रे वाली संभावना है। जटे सापेक्ष आर्द्रता रे अगर आप बात करा

0: न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 2736 और अधिकतम 7-12% रहने वाली संभावना है। या तो ही देखो मौसम संबंधी जानकारी और देखो कार्यक्रम में अभी कृषि संबंधी सामान्य जानकारी।
1: बिल्कुल सर, सामान्य जानकारी रही अभी बात करा तो मिट्टी में नमी बनाए रखवारे वास्ते अपने पंक्तियां ने बीच में सूखी घास या पचे फसल ने अवशेष उपयोग करना है सर।
0: और गर्म हवारे बचाव रे बात है देखो खेतारी सीमा पर जो है आपा विंड बैक स्ट्रिप्स या पर जो जूटरी जाली जो है वह लगे सका। और जटे देखो अनाज री बात करा तो गेहूँ में देखो सब जगह देखो गेहूँ निकल चुका है और अब वनडे देखो भंडारण की प्रक्रिया चल रही है। तो अनाज ने भंडारण में रखा हूँ पहला भंडार घर ने देखो अच्छी तरह सफाई कर देनी है। अनाज ने अच्छी तरह सुखाई ने देखो कूड़ा कचरा ने जलाई ने या बचे खेत में दबाई ने नष्ट कर देना। और दाना में यदि नमी 12% ज़्यादा नहीं हुए तो वनडे देखो भंडारण कर सका। भंडारण घर रही छत है दीवार है और फर्श जो है वनडे एक भाग मेला थे 50 cc ने 100 भाग पानी में मिले देखो अपने छिड़काव करना है। यदि पुरानी बोरियाँ प्रयोग करनी पड़े तो वणा ने एक भाग मेला थियान और 100 भाग पानी में गोल वणई ने 10 मिनट तक भिगोई ने अगर छाया में हुकई दांगा और पचे अगर आप वण में अनाज रो भंडारण करांगा तो अनाज भंडारण सही और सुरक्षित तरीका होगा और वण में दीमक या पचे कीट पतंगा जो है वणा रो आक्रमण कम वेगा सा।
1: बिल्कुल सा, बात करा अपनी मूंगरी तो सिंचाई अनी टाइम मूंगरी फसल में फूल आवा पे या पचे फर ली जो बने वनी अवस्था में आपने नमीरी भी ध्यान रखनो है, अगर कमी वेगा तो पैदावार घट सके सा।
0: अंडे बात है देखो टेम टेम पे आपने देखो हल्की सिंचाई करते रहना और गत गर्म मौसम रे अगर आप बात करा तो उनमें देखो थ्रिप्स रो प्रकोप बढ़ जावे। अंडे बात है देखो नियमित रूप आपने निगरानी करनी है सा।
1: बिल्कुल सा, बात करा आप कपास री तो अणी सप्ताह में किसान कपास री बुआई रे वास्ते खेत ने तैयार कर ले और गुणवत्तापूर्ण जो प्रमाणित बीज वे भी कणी भी विश्वसनीय स्रोत हुई खरीदे सा।
0: और जटे देखो बेल वाली सब्जियाँ रही अगर आप बात करा तो कुष्मांड कुलरी सब्जियाँ में देखो लाल अभ्रंग कीट अंकुरित व नई पत्तियाँ ने खाई ने फसल ने हानि पहुँचावे। अंडी रोकथाम रे बात है कार्बारिल 5% चूर्ण जो है 25 किलो प्रति हेक्टेयर दर सुबह या हांजरी टाइम में भुरकाव कर सके। जटे भिंडी री बात करा तो तेज हवा चाल वाली संभावना ने देखता लगा किसान ने जो है भिंडी जो है वह अन्य सब्जियाँ री तुड़ाई लारे करवारी सलाह दी जावे ताकि संभावित नुकसानों बच सके।
1: देखो सर, ग्रीष्मकालीन हरा चारा री बात करा तो गर्मिया रे महीना में हरा चारा री काफ़ी कमी भी जावे तो अंडे वास्ते आपने हरा चारे वाली जो फसल वे वंडी अपनी बुआई करनी है सर।
0: बिल्कुल सही बात कर रहे हो। और जटे देखो जायद मूंगफली री बात करा तो खरपतवार प्रकोप ने नियंत्रित करवा रहे वाते उचित गैगिंग और इंटरकल्चर ऑपरेशन रला रहे हाथ री गुड़ाई री देखो आवश्यकता पड़े। और अन्य टाइम पे देखो जटे आप गर्मी री बात करें और देखो आज नो तपा लागियो है तो अन्य गर्मी री टाइम पे देखो अपने चावे की पशु जो है वना ने देखो अपने छाए में बांधना है। सुबह री बेरा दन री बेरा और हाँ री बेरा जो है देखो वना रे पीवा रे पानी रे साफ और जो ठंडो पानी है वनडी व्यवस्था करनी है और टाट पट्टिया वगैरह लगे ने जो देखो वना रे ठंडक री जो पूरी व्यवस्था रखनी क्योंकि अगर धूप में पशु रहेगा तो देखो वो कठिन कटे मांदगी रो शिकार वेगा और जटे मांदगी भी तो वटे कटे देखो अपने नुकसान वही सके। कार्यक्रम में देखो आप आगे और भी बात चिता करांगा लेकिन को तो सब किसान भाई बहना ने एक राजस्थानी लोकगीत सुनावा सा।
1: हाँ सर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो देखो रेखा भाई, सही हो तो होने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और कार्यक्रम में बढ़ता लगा। देखो अपा सरकारी जो योजना है वनारी जानकारी भी देखो अपा किसान भाई बहना ने दा। तो आज किसान भाई बहना वाते कैसी योजना आप लेने आया हो सा?
8: देखो सा, किसान भाई बहना वास्ते आज लाया नमो ड्रोन दीदी योजना।
7: बिल्कुल सर, नमो ड्रोन दीदी योजना जो है भारत सरकार एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना है। झंडो उद्देश्य ग्रामीण महिला ने आत्मनिर्भर बनाई ने वना ने कृषि क्षेत्र री आधुनिक तकनीक जो है वना में बढ़ावो देनो है।
8: देखो सा, अणी योजना में महिला स्वयं सहायता समूह रे साथ में ड्रोन चलावारी ट्रेनिंग भी लेवे सा।
7: और देखो जो ड्रोन चलावारी ट्रेनिंग रे आपका आज की दे मंडल आरे लारे ने ड्रोन भी उपलब्ध कराए जावे, ताकि वे खेत में नैनो यूरिया, कीटनाशक और पोषक तत्वों जैसे छिड़काव हर की जो जानकारी है वे साझा करें। और जटे तो अंडे योजना रे मुख्य उद्देश्य रही अगर आप बात करा तो सबसे पहला उद्देश्य है महिलाओं रो सशक्तिकरण। ग्रामीण महिला ने ड्रोन पायलट बनाई ने बनाने तकनीकी रूप कुशल और आर्थिक रूप बढ़ावा दियो जा सके।
8: देखो सा, अंडे साथ में आधुनिक कृषि ने बढ़ावा भी में दियो जावे, जो कि पारंपरिक तरीका जिस तरह की पीठ पे टैंकर रखने छिड़काव करवारी जगह जो ड्रोन तकनीक है बनी फसला पे भी छिड़काव बढ़ावा दे सा।
7: बिल्कुल सा, और जड़े देखो समय और संसाधन री बचत री अगर बात करा तो ड्रोन रे छिड़काव करो देखो अपने समय री बचत वे। अंडे लारे लारे जो देखो अपने की खाद पानी और अनारो जो नुकसान वे वंडी भी बचत वे। और यदि देखो आप रोजगार रे नया अवसर री अगर आप बात करा तो ड्रोन देखो अपने ड्रोन दीदी मंडे महिला जो है हर दिन देखो आमदनी ने बढ़ ही रही है और अनारी आमदनी बढ़ावा में जो सरकार है वह भी मदद कर रही है सा।
8: देखो सा, अणी योजना में सरकार द्वारा सा जो स्वयं सहायता समूह में विने ड्रोन और अन्य सहायक उपकरण खरीदवाने वास्ते सब्सिडी लोन की सुविधा भी मिले सा।
7: और जटे देखो अंडे पात्रता रही अगर आप बात करा कि अंडमें कौन कौन पात्र है तो देखो आवेदक महिला जो है वह भारत री मूल निवासी बनी चाहे, महिला री उम्र 18-37 वर्ष बच्चे बनी चाहे और महिला जो है कहीं मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूह देखो अगर जुड़ी लगी वेगा तो वो अण में अनिवार्य है। और आवेदक महिला कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण बननी चाहे, ताकि जो तकनीकी चीज़ा है वना ने वे आसानी समझ सके।
8: देखो सर, ड्रोन तकनीक में जो किसान भाई बहना ने फायदा

0: मिलेवा भी बात करा तो सुरक्षित छिड़काव जो कि जहरीला कीटनाशक रे सीधा संपर्क में आऊं भी किसान बच जावे सा।
1: और देखो ड्रोन तकनीक को देखो, समान छिड़काव है, ड्रोन पूरा खेत में एक समान मात्रा में देखो दवा या खाद रो छिड़काव करे, जणों की देखो फायदों हुए और फसल री गुणवत्ता सुधरे। और जैसे लागत री बात की थी तो पानी री खपत 90% तक कम हुए और जो खाद री बर्बादी हुए वह भी रुके है। तो आप तो जो भी यो कार्यक्रम ढूंढ रहे हैं वना सब किसान भाई बहना ने कहांगा कि नमो ड्रोन दीदी योजना जो है अंडे किसान महिला जो है देखो वह अधिकाधिक भाग ले और अंडे अधिक जानकारी बातें जो आधिकारिक वेबसाइट है वन पे भी जैने जो महिला है वे देखो जानकारी प्राप्त कर सके और अपने आमदनी में इजाफो कर सके। और कार्यक्रम में को तो गीत संगीत हुनावा सा।
0: हाँ सर।

0: तो देखो साइयो, तो प्यारो सो राजस्थानी लोक भजन हुणी और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ता लगा। देखो बार घर मेरी आपा बात कर रहा और पशुओं में देखो चारा प्रबंधन ने जटे आपा बात करा, तो किसान भाई बहन जो है वो हरो चारों कणी प्रकार देखो अधिकाधिक उत्पादित करे, ताकि वणु जो है देखो किसान भाई बहना ने देखो चारा री जो कमी है वह देखो नहीं लागे।
1: देखो साहब, पशु और स्वास्थ्य और बेहतर दूध रे उत्पादन ने वास्ते जो हरो चारो उगाणो है वो बहुत फायदेमंद वे से।
0: बिल्कुल सही कह रहे हो किसान भाई। देखो वैज्ञानिक तरीका और देखो सही तरीका अगर खेती बाड़ी करे तो भी देखो कम लागत में साल भर जो है पौष्टिक हरो चारो प्राप्त कर सके। और हरा चारा उगावरी जटे आप देखो बात करा तो उनमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि मौसम रे चुनाव रे अनुसार अगर आप फसला रो चयन करांगा और वंडी वावणी करांगा तो आपने लाभ मिलेगा सर।
1: देखो साहर अरे मौसम में अगर आप वावनी कर रहे हैं जिस तरह की अक्टूबर नवंबर महीनों में वणी में बरसीम जई रिचकारी आपने वावनी करनी है।
0: बिल्कुल सर, जैसे देखो आप बरसीम री बात की थी तो ये प्रोटीन भरपूर वे और जई में भी देखो अच्छी ऊर्जा मिले जणू पशुओं ने देखो पोषण प्राप्त वे। और जटे देखो खरीफ और बरसात रे अगर आप बात करा तो जून जुलाई में वावनी करने देखो जवार है, बाजरा है, मक्का है, लोबिया है, अने चारा री अगर आप उपज ला तो ये फसला तेजूम बड़े और भरपूर और भारी मात्रा में चारो देवे है सा। और जटे जायद री बात करा तो
1: देखो साहब, मार्च अप्रैल में अगर चरी ज्वार सुडान घास और लोबिया आप ही उगा सका सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ।
1: और पानी री उपलब्धता वेवा पे भी आप ही गर्मी रे सीजन में चारा री कमी ने दूर कर सका सा।
0: बिल्कुल सा। और जटे देखो हरा चारा उगावरी अगर आप बात करा तो देखो सबसे पहला खेत री तैयारी करनी है। खेत ने दो तीन बार अच्छी तरह जोत ने मिट्टी ने भुरभुरो बनाई लेना है। चारा री फसला में देखो जल निकासी जो है वह अच्छी बनी चाहे, क्योंकि खेता में अगर पानी भरियो रहेगा

0: तो बरसीम या मक्का जो है वो खराब भी सके, और खेत तैयार करती बेरा जो है अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद जो है अपने खेत में मलानी है सा।
1: देखो सा, वंडे साथ में अपने बीजोपचारे वास्ते जो दलहनी फसल वेवे वणी में अपने बीज ने बोऊं पहला अपने राइजोबियम कल्चर उपचारित कर लेनो है सा।
0: बिल्कुल सा, और हमेशा अच्छी नर्सरी या प्रमाणित दुकानों देखो, उत्तम किस्म का बीज खरीदना है, और अंडे देखो यदि आप, क्योंकि राइजोबियम कल्चर अगर आप अपने उपचारित करेंगा तो अणु पौधारी जड़ा में देखो गांठ नहीं बनेगा, और जो हवा ने नाइट्रोजन सोखेगा और फसल जो है वह दमदार वेगा। अंडे लारे लारे जटे देखो अपने अगर वावनी री अगर आप बात करा तो बुवाई रे केड़े देखो जो आप चीजारो सिंचन करने खेता में जो है नर्सरियां तैयार कर सका, या कतारों कतार दूरी जो है वन में देखो आप लगे सका। जिस तरह की आप बात करा तो छोटा बीज जिस तरह की बरसी में वणाने क्यारियाँ वणाने पानी भरकाव छिड़काव विधि में बोई सका, और जो बड़ा बीज है वणाने अपा कतारा में बोएवा जणू की खरपतवार निकालवा में और कटाई में आसानी वैसा।
1: बिल्कुल सा, सिंचाई और खाद प्रबंधन की बात करें तो आपने पहली सिंचाई बुवाई रे तुरंत बाद या पचे नमी रे अनुसार करनी है और अबार रे मौसम में 7 से 10 दिन रे बच्चे कर लेनी है सा।
0: और जटे देखो वावणी में खाद रही अगर आप बात करा तो चारा री फसल में यूरिया री ज़्यादा जरूरत है ताकि पत्तियां हरी और बड़ी वे, और हरी कटाई के बाद में देखो जो हल्की सिंचाई है वह देणो लाभप्रद वे। और जटे बहुवर्षीय अगर चारा री आप बात कर रहे हैं हाँ, तो उनमें जो नेपियर घास है वनने आप लगे सका, और रिचको जो आप लगावा तो वह 3 और 4 साल तक चाले, और सर्दियों में देखो बार बार कटाई देवे। जटे चारा री कटाई री अगर आप बात करें तो जवारी कटाई जो फसल है वह बहुत छोटी घुटना तक वह, तो वन में देखो वन ने कटाई करनी नहीं चाहे क्योंकि वह देखो खराब हो जावे, और जटे देखो आपा कहा कि सही टाइम अगर फूल आई रहा है वन टाइम अगर आपा वनारी कटाई करा और वन ने अगर आपा राखी था तो वह अपने साल भर यदि चारा रही अनुपलब्धता वे तभी वे आपा पशु पोषण में दे सका। तो या तो दीदी को जानकारी और कार्यक्रम में आगे बढ़ा तो को तो एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत होना सा।
1: हाँ सर।

0: तो देखो सा यो तो होने प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत। और देखो कार्यक्रम में आगे बढ़ा और देखो आप आवाज करा आज री तारीख रित आज है 25 मई। और देखो आज जो देखो नौ तपा जो है वो प्रारंभ भई गयो है सा।
1: बिल्कुल सर, देखो सर, नौ तपा जो है बिना भी प्रकृति रो अनिवार्य संतुलन भी कही सका सा।
0: बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ज्येष्ठ मास में नौ तपा रो अगर आप बात करा तो अंडो बहुत महत्व है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करे तो पहला जो नौ दिन है वणा में देखो प्रचंड गर्मी या पचे झंडा पर लू का वा पड़े है और झंडा पर नौ तपा का और अनिल टेम जो तापमान है देखो बढ़तो जाए और बढ़ने देखो 45, 47, 48, 50 डिग्री तक भी जा सके। और 25 मई यो देखो 2 जून तक यो नौ तपा रहेगा। अगर यो नौ तपा नहीं तपे तो देखो कई कई बज सके देखो वह जानकारी आप करावा सा।
1: बिल्कुल सर, देखो सर, पहला जो दो दिन है वी अगर नौ तपा नहीं वेगा तो चूहा बहुत भी जाएगा सर।
0: बिल्कुल सा। और यदि देखो चूहा बहुत बह जाएगा तो अगला 2-3 दिन में देखो कीड़ा मकोड़ा जो है देखो वनारी बढ़वारी संभावना बह जाए और पचे धीरे धीरे जो टिड्डिया है वनारा अंडा भी देखो धीरे धीरे बढ़वा लाग जाए जी नष्ट नहीं वे वह है।
1: बिल्कुल सर, और जटे नौ तपारी बात कर रहे हैं तो पांचवा छठा दिन आता तक का बुखार लाव वाला जतरा भी विषाणु वेवे भी रही जावे सा।
0: और छठा और सातवां दिन की बात करा तो देखो चूहा की वृद्धि भी है तो सांप बिच्छू जो है देखो वणा में भी वृद्धि वेगा और भी यदि नियंत्रण बाण वेगा तो कठिन कठे देखो जो गलत है वंडी संभावना बढ़े।

0: ऐसा
1: देखो सा, आखिरी जो 2 दिन की बात करा तो अणि स्थिति में आंधी अधिक चाले और जत्री भी फसला है विने भी चौपट कर दे सा।
0: तो देखो प्रकृति रो संतुलन अगर बनाना है तो देखो अपने प्रकृति संतुलन रे वाते ना नौ दिन रो ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये नौ तपा सही तरह तपेगा तो वर्षा जो है देखो सही समय पर और अच्छी मात्रा में आएगा। और प्रकृति रो संतुलन रे वाते ना नौ दिन में भीषण गर्मी अगर पड़े तो देखो आगे जो रोहिणी तपे तो वह देखो कटे न कटे जो मेघ लावे वे भरपूर मात्रा में लेने आवे और अच्छी बारिश री कामना वे हैसा। तो देखो या तो बात की थी अपन नौ तपा जो कि एक प्रकृति रो अनिवार्य संतुलन है, तो अड़ी नौ तपा में देखो आपने भी अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखनो है। घरों बाहर निकलती बेरा देखो पानी पीने निकलना और दोपहर रे टाइम जितरो भी वे कमो कम काम रखने, सुबह और हांजरी बेरा देखो अपनो काम निपटाओ और फसला वगैरह डांडा चौपा जो है बना रहे हार संभाल करो और अपने स्वास्थ्य रो ध्यान रखो। तो या तो की दी देखो बातचीत और को तो चलता चलता एक प्यारो सो राजस्थानी लोकगीत और सुनावा सा।
1: हाँ सर।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो देखो सा, ये तो हुण्यो राजस्थानी लोकगीत और लाल लारे हुण्यो संदेश। और देखो घड़ी रियाड़ी देखा तो देखो कार्यक्रम चालवारो अपनो टाइम वेरो, तो काले पाछा मिलवार वादार साथ आज्ञा ला सा। जय जवान
1: जय किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और घर, मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है।

हल्का याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। ये गीत संगीत अनु मलिक का था और फिल्म

विजयपथ फिल्म के बाद लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म मेरे यार की शादी है से। अलका याग्निक, उदित नारायण और सोनू निगम के स्वर और इस गीत को संगीत से सजाया है जीत और प्रीतम ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत जिसे हमने चुना है फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से। अलका याग्निक, शमक

कीजिए लता मंगेशकर और उदित नारायण के स्वर हैं, और इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल शर्मा ने। फिल्म है मुझसे दोस्ती करोगे।

एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

किल दिल, इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, निहारा जोशी और दीपेंद्र गुर्जर की आवाज़ में गीत, संगीत शंकर एहसान लॉय का था। लीजिए सुनिए अगला गीत, विद्याधर के संगीत से सजा हुआ फिल्म हलचल से उदित नारायण और सुजाता मोहन के स्वरों में।

0: श्रोताओं, हलचल फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथहानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा

0: पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण

कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

पंकज उदास की खूबसूरत आवाज में अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। श्रोताओं, मीडियम वेट 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये उदयपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए नरेश वैयर का सितार वादन।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना नरेश वैयर का सितार वादन। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर। रात के 10 बजे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सबसे पहले सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म गाइड में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेमलता के स्वर में अखियों के झरोके से फिल्म से गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत सलिल चौधरी का, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है रजनीगंधा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्रोताओं, आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म चिपके चिपके से, संगीत SD बर्मन का, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए, अब आपको लिए चलते हैं कुछ नए गीतों की ओर और सुनवाते हैं बॉर्डर 2 फिल्म से ये गीत विशाल मिश्रा और रूप कुमार राठौर के स्वरों में।

यारिया, ये है अगली फिल्म जिसे आपको सुनवा रहे हैं। अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह की बोल, कॉकटेल फिल्म है।

श्रोताओं, कॉकटेल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे खूबसूरत गीत। लीजिए सुनिए अगला गीत, फिल्म गदर 2 से संगीत नीति मोहन की आवाज, संगीत है मिथुन का।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और श्रोता लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का अगला गीत जिसे हमने चुना है फिल्म ए दिल है मुश्किल से। प्रीतम के संगीत से सजा हुआ ये गीत है और इस गीत को गाया है अरिजीत सिंह ने।

श्रोताओं लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म ओके जानू से। इस गीत को गाया है A.R. रहमान और श्रीनिधि वेंकटेश ने, और संगीत A.R. रहमान का।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 11 बजने को हैं। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला

0: के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra